0: 50 lakhs. For organized crimes, the bill was a minimum sentence of 7 to a fine of up to 10 crore rupees. The bill has been listed for introduction as well as consideration and passage. Meanwhile, the new education minister, Prahlad Joshi, and also the home minister, Amit Shah, met last night in order to ready the government's counter when it comes to the opposition and the government's stand on the bill.
1: केंद्र सरकार सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल की जैसे अपराधों पर और अधिक प्रभावी एवं कठोर कानूनी व्यवस्था लाने जा रही है। यह करोड़ों युवाओं की मेहनत और उनके भविष्य की रक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हमेशा से स्पष्ट मत रहा है कि युवाओं की मेहनत और उनके सपनों के साथ खिलवाड़ करने वालों के लिए नए भारत में कोई जगह नहीं है। उनके नेतृत्व में पेपर लीक माफिया और नकल गिरोह युवाओं का भविष्य लूटने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।
2: छात्रों के दबाव से, संपूर्ण विपक्ष के दबाव से सरकार मान गई और इस्तीफा कराया, ठीक है। अब छात्रों की कुछ और मांगे भी हैं, लेकिन जो भी केंद्र सरकार कह रही है कि हम उसमें अभी कैबिनेट से उन्होंने कुछ पारित कराया है, उसको उस पर बहस कराएगी और उसको इंट्रोड्यूस करेगी, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। सजा का प्रावधान किया है, अच्छी बात है, क्योंकि इसे गंभीरता से लेनी चाहिए। लेकिन सिर्फ सजा से भी नहीं होगा, कई तो कितनी सारी सजाएं हैं, आप देख रहे हैं कि पूरे देश में कितने कानून हैं, जिसका भी अगर जो लोग ये सब करते हैं उसका डर भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो मुझे लगता है कि सरकार को तटस्थ रहना पड़ेगा।
3: पेपर लीक के कानून को और इतना सख्त बनाया जाएगा ताकि ऐसा कोई अपराध, और ये अक्षम्य अपराधों में से है, ऐसा कोई अपराध करने से कम 100 बार सोचे। और उसी सोच के साथ पिछली कैबिनेट में इसको पारित किया गया और ये विश्वास दिलाया गया था कि अगले हफ्ते सत्र के दौरान इसको भारत की संसद में भी लाया जाएगा। इसमें कई प्रावधानों को पहले से ज्यादा मजबूत करने का काम किया गया।
4: द यूथ ऑफ द कंट्री, द स्टूडेंट्स ऑफ द कंट्री हैज गिवन अ क्लियर वार्निंग। एज वाई यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, दे सरेंडर्ड, यस्टरडे दे सरेंडर्ड टू द नेशन। व्हाट वाज देयर अर्लियर स्टैंड? देयर इज नो डिस्कशन, नो डिस्कशन इन द पार्लियामेंट, nothing is there. That's what earlier stand. Now they are telling, they are bringing the bill tomorrow, not for delimitation, for other issue, this need CBSE issue. Let us see. We are going to meet tomorrow morning 10 o'clock, and we will take a call about that bill.
0: A political showdown is underway between the opposition and the government over the violence that took place on the 20th of July at Jantar Mantar here in the national capital. Both sides are locked in a war of allegations and counterclaims as they return to business in the monsoon session. The opposition's strategy and agenda is very clear. They will raise questions over the lorry charge on protesters, allegations of pellet gun-like injuries and the presence of personnel in civil clothes and without name tags on the 20th of July. Rahul Gandhi has directly questioned the Home Minister over the alleged use of force. He has sought answers on claims of pellet gun use, injuries to protesters, the deployment of personnel during the protests. The opposition is demanding accountability while the government is preparing its response to the allegations. So a stormy session is on the cards when it comes to the parliament. Aishwarya, my colleague joining us in order to get us details. Aishwarya, you know, the leader of opposition, Rahul Gandhi, has been demanding the apology of the Prime Minister, then followed by this letter that he's written to Amit Shah. Talk us through, you know, the case that he's making, the questions that are expected to come up, and the stormy session that we do know is going to be coming up in a few hours' time from now.
5: Well, remember, Congress has made their point very clear on a day when it was the strikes and the protests that were called off from Jantar Mantar. Congress clearly stated that they have two more demands. First, Prime Minister should apologize to the students and to the youth of the country. Number two, action should be taken against those police personnel who have shown brutality towards students on the July 20th march towards Parliament. So these two are the key demands that still remains, and therefore the reason perhaps the opposition will try to

0: देश का टायर जेके टायर।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा
3: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100।
4: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move. This car makes no sense, yet it makes every sense.
5: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
4: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
6: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
7: Really?
6: Fashion that made you gag. Films that made you fangirl. Art that made it to the gram. And trends that kept us with the program. Let's get it. Hello and welcome to a brand new show. I am your host Mayank Chaudhary and this is Limelight.
8: प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे
9: स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ऑफ द न्यूज रूम टू द कोर ऑफ द स्टोरीज शेपिंग योर वर्ल्ड जॉइन मी गार्गी राउत एज आई ट्रैक ऑल द डेवलपमेंट्स एज दे ब्रेक लाइव फ्रॉम द एनडीटीवी न्यूज रूम वीकडेज एट 4 PM।

0: rising, especially in the villages of West Bengal.
1: When stories have impact.
2: Padmasar Joshi, managing editor and prime time anchor.
1: The news has influence.
3: Welcome back. Now, India opened its gold medal account at the 2026 Commonwealth Games as Mirabai won the women's 48kg weightlifting title with a record-breaking performance. She, in fact, lifted 85kg in the snatch and 105kg in the clean and jerk for a total of 190kg. Setting a new Commonwealth Games and Commonwealth records, the win gave India its first gold of the Games and marked the third consecutive Commonwealth Game for Mirabai and the fourth Commonwealth Game medal overall. The Prime Minister congratulated Mirabai on her historic achievement. After her victory, NDTV Sports Editor Rika Roy spoke exclusively to Mirabai. Let's listen in.
4: Mira, hum hamesha se haste hue Mirabai ko dekha hai. Aaj podium par rote hue Mirabai ko humne dekha. Kya bahut zyada emotional moment tha kyunki beech mein इंजरीज हुए थे, वेट कैटेगरीज चेंज करना था, क्या मतलब क्या सोच रहे थे आप?
5: बहुत कुछ आ रहा था मन में कि खुश भी दुख भी, उनके वेट कंट्रोल करके रखना मेरे लिए बहुत बड़ा अचीव ऐसा लग रहा था कि अब मुश्किल भी थे और ये जरूरी भी थे मेरा. तो वो सब जब पोडियम में खड़े थे तो हमने क्या क्या फेस किया था, कितना इंजुरी का मैं फेस करना पड़ा और बॉडी वेट लाने के लिए मतलब क्या खाना क्या नहीं खाना वो सब पहले से ही मतलब ज्यादा कंट्रोल करना पड़ रहा था. तो वो सब याद आ रहे थे. तो जब मेडल और पोडियम में जब खड़े थे और हमारी फ्लैग जो इंडिया का फ्लैग ऊपर आ रहा था और नेशनल एंथम जब गा रहे थे तो अंदर से मतलब बस आ गए थे, मैं खुशी का ही था आंसू तो रुक नहीं पाए थे. मैं तो बहुत खुश हो गया था, मतलब खुशी का ही आंसू था. तो मेरा पेन जो हुआ था ये सब लेके आज ये मेडल के लिए ही मैंने मतलब पूरा मेहनत किया था तो बस उसी की खुशी था.
4: मेरा मैं दो साल पहले की बात करूंगी आपसे. मैं लास्ट मिली थी आफ्टर द ओलंपिक गेम्स, फोर्थ आए थे आप पेरिस में और उस दौरान आपको पीरियड्स का बहुत पेन हो रहा था. उस दिन जिस दिन कॉम्पिटिशन था मुझे वो दिन बहुत याद आ रहा है आज. वहां लेके अब तक आपको लगता है कि मतलब आपने पूरा जो कॉम्पिटिशन का साइकिल चेंज कर दिया है, अपने आप को विंडिकेट किया है दैट आई बिलोंग टू दिस स्टेज?
5: जी हाँ, बहुत कुछ मैंने फेस किया है पेरिस ओलंपिक में. सबको पता है कि मैं कैसा मतलब रह गई थी, 1kg में मेरा मेडल छूट गए थे. तो उस सब को अभी तक मैं याद करती हूँ कि मैंने क्या क्या उसी टाइम क्या क्या फेस किया था. इंजुरी भी थी, हिप जॉइंट में पेन हो रहा था और उसी दिन पीरियड्स भी थे. तो सबको पता है कि जब हमारी जो प्रॉब्लम होते हैं उसी टाइम में हमको क्या क्या मतलब पेन होते हैं, कैसे क्रेम होते हैं वो सब, और बॉडी पूरा लूज हो जाते हैं. तो उसी टाइम में भी मुझे कंपटीशन खेलना है, फाइट करना है इंडिया के लिए, वेट लिफ्टिंग के लिए. तो वो सब हाँ, एक प्लेयर्स में तो ये सब फेस करना बहुत जरूरी होता है. वो भी मैंने फेस किया है, फेस करके ओलंपिक तक पहुंचा. पर हाँ, मेडल लेना और जीतना हारना ये तो हमारी लाइफ में होता है, एक प्लेयर्स की लाइफ में होता है. तो उसी में से बहुत सारी कुछ सीखने को मिलते हैं कि हर कंपटीशन में हम कुछ ना कुछ सीखते हैं कि क्या करना है और क्या इम्प्रूव करना है. जब भी हमारी प्रॉब्लम्स आते हैं, लेटेस्ट प्रॉब्लम्स जब आते हैं तो हम क्या और करना चाहिए वो सब. तो बस वो सबकी खुशी था आज.
6: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात.
7: वाओ मामा, क्या स्वाद है!
8: अरे मेरे राजा,
9: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100.
8: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move. This car makes no sense, yet it makes every sense. What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi. Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility. This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
9: Really?
8: Fashion that made you gag. Films that made you fangirl. Art that made it to the gram. And trends that kept us with the program. Let's do it. Hello and welcome to a brand new show. I am your host, Mayank Chaudhary, and this is Limelight.
10: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, everyday.
11: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV Newsroom, weekdays at 4 p.m.

0: Guys, Prime Minister has launched a series of Instagram videos explaining the government's reform roadmap. The first signal came on the 23rd of July. For the first time since the examination row escalated, Prime Minister Narendra Modi released a video on Instagram addressing the issue of exam reforms. Rather than engaging in the political slugfest, the Prime Minister assured students that government was committed to fixing the process. It was a carefully crafted message, short, direct and designed for a social media audience.
1: मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।
0: अ डे लेटर अनदर इंस्टाग्राम वीडियो, दिस टाइम ही थैंक द यूथ फॉर द ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स।
1: थैंक यू फ्रेंड्स। कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा।
0: द मैसेजिंग रिमेन्ड कंसिस्टेंट, फोकस ऑन रिफॉर्म्स, focus on students and avoid the political noise surrounding the protests. The outreach has now entered the third phase. Prime Minister announced the formation of a high-powered task force on examination reforms to be led by Infosys co-founder Nandan Nilekani. The announcement was once again made through an Instagram video, reinforcing the government's decision to communicate directly with the young audiences on the platform they use the most.
1: Jin logon ne विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
0: द टाइमिंग इज सिग्निफिकेंट। फॉर डेज द कंट्री विटनेस प्रोटेस्ट ओवर द एग्जामिनेशन सिस्टम। स्टूडेंट्स ऑक्यूपाइड द स्ट्रीट्स, पॉलिटिकल पार्टीज एंटर्ड द डिबेट। अगेंस्ट दैट बैकड्रॉप, प्राइम मिनिस्टर्स कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी अपीयर्स focused on speaking directly to young Indians instead of responding through conventional political platforms. Whether this digital outreach changes public perception remains to be seen. The government's examination reform campaign is no longer confined to official statements of parliament. It is now playing out on the smartphone screens of millions of young Indians. Bureau Report, NDTV.
1: बहुत ही पीड़ादायक है।
2: Meanwhile, the nationwide debate over the examination reforms has now found an unexpected political dimension, with the daughters of two NDA leaders drawing attention for their reported support for students. Archita Rahar, daughter of BJP MP Aparajita Sarangi, shared an Instagram post stating, "I stand with students." She later defended the post, saying she would not delete it and that her views were her own. Meanwhile, in Assam, Dibisa Mahanta, daughter of Minister Keshav Mahanta, was seen at a student protest in Guwahati, expressing solidarity with those protesting there.

0: is struggling. From a Taluk board member back in 1978 to becoming Karnataka chief minister twice, Siddaramaiah's political journey spans 5 decades, and now citing age and health, he plans to skip the upcoming assembly polls. Siddaramaiah's possible exit, though, from electoral politics, it could pose challenges for the Congress in Karnataka, many argue, because the party may face a leadership gap, impact on its Ahinda support base, and a weaker rural connect. Many also argue that his absence could also trigger internal competition within the state unit. Here are the reactions you can't ignore.
1: Siddaramaiah sir is our toilet leader in Congress. Entire Congress party, including Rahul Gandhi and Mallikarjun Kharge, they respect Siddaramaiah sir very much. His services are very much required in electoral politics of Karnataka. Siddaramaiah sir, I appeal to Siddaramaiah sir, he should lead us.
2: So no question of retiring. Siddaramaiah is not going to retire from elections, I mean politics. He'll be there because he's our asset. He's a party asset. He's a big leader. He's a mass leader. So that's what, there is no question of he's going away from the politics. He'll be there in the politics and also for everything. Even now government, what V.K. Shivakumar as a chief minister running the government, he is going to giving an administration based on his all suggestions and he's taking opinion from him. So that both of them, they'll go to the election next 2028 and to bring back government in Karnataka.
3: He's a very good leader. He will be the strength of the party and he will be guiding us. He's a very good leader. He will be the strength of the party and he will be guiding us.
0: And finally, India opened its gold medal account at the 2026 Commonwealth Games as Mirabai Chanu won the women's 48kg weightlifting title with a record-breaking performance. Mirabai Chanu lifted 85 kilograms in the snatch and 105 kg in the clean and jerk for a total of 190 kg, setting new Commonwealth Games and Commonwealth records. The win gave India its first gold of the Games and marked Mirabai Chanu's third consecutive Commonwealth Games gold and 4th CWG medal overall, by the way. Our Prime Minister has congratulated her on her historic achievement. And after her victory, my colleague Rika Roy spoke exclusively to Mirabai Chanu. Here's what she told NDTV.
4: Meera, hum hamesha se haste hue Mirabai ko dekha hai. Aaj podium par rote hue Mirabai ko humne dekha. Kya bahut zyada emotional moment tha, kyunki beech mein इंजरीज हुए थे, वेट कैटेगरीज चेंज करना था, क्या मतलब क्या सोच रहे थे आप?
5: बहुत कुछ आ रहा था मन में कि खुश भी दुख भी, उनके वेट कंट्रोल करके रखना मेरे लिए बहुत बड़ा अचीव ऐसा लग रहा था कि अब मुश्किल भी थे और ये जरूरी भी थे मेरा. तो वो सब जब पोडियम में खड़े थे तो हमने क्या क्या फेस किया था, कितना इंजुरी का मैं फेस करना पड़ा और बॉडी वेट लाने के लिए मतलब क्या खाना क्या नहीं खाना वो सब पहले से ही मतलब ज्यादा कंट्रोल करना पड़ रहा था, तो वो सब याद आ रहे थे. तो जब मेडल और पोडियम में जब खड़े थे और हमारी फ्लैग जो इंडिया का फ्लैग ऊपर आ रहा था और नेशनल एंथम जब गा रहे थे तो अंदर से मतलब बस आ गए थे, मैं खुशी का ही था आंसू तो रुक नहीं पाए थे, मैं बहुत खुश हो गया था, मतलब खुशी का ही आंसू था. तो मेरा पेन जो हुआ था ये सब लेके आज ये मेडल के लिए ही मैंने मतलब पूरा मेहनत किया था, तो बस उसी की खुशी था.
4: मेरा, मैं 2 साल पहले की बात करूंगी आपसे. मैं लास्ट मिली थी आफ्टर द ओलंपिक गेम्स, 4th आए थे आप पेरिस में, और उस दौरान आपको पीरियड्स का बहुत पेन हो रहा था उस दिन जिस दिन कॉम्पिटिशन था. मुझे वो दिन बहुत याद आ रहा है आज. वहां लेके अब तक आपको लगता है कि मतलब आपने पूरा जो कॉम्पिटिशन का साइकिल चेंज कर दिया है, अपने आप को विंडिकेट किया है दैट आई बिलोंग टू दिस स्टेज?
5: जी हाँ, बहुत कुछ मैंने फेस किया है पेरिस ओलंपिक में। सबको पता है कि मैं कैसा मतलब रह गई थी, 1 kg में मेरा मेडल छूट गए थे। तो उस सबको अभी तक मैं याद करती हूँ कि मैंने क्या क्या उसी टाइम में क्या क्या फेस किया था। इंजरी भी थी, हिप जॉइंट में पेन हो रहा था और उसी दिन पीरियड्स भी थे। तो सबको पता है कि जब हमारी जो प्रॉब्लम होते हैं उसी टाइम में हमको क्या क्या मतलब पेन होते हैं, कैसे क्रेम होते हैं वो सब, और बॉडी पूरा लूज हो जाते हैं। तो उसी टाइम में भी मुझे कंपटीशन खेलना है, फाइट करना है इंडिया के लिए, वेट लिफ्टिंग के लिए। तो वो सब, हाँ, एक प्लेयर्स में तो ये सब फेस करना बहुत जरूरी होता है। वो भी मैंने फेस किया है, फेस करके ओलंपिक तक पहुंचा। पर हाँ, मेडल लेना और जीतना हारना ये तो हमारी लाइफ में होता है, एक प्लेयर्स की लाइफ में होता है। तो उसी में से बहुत सारी कुछ सीखने को मिलते हैं कि हर कंपटीशन में हमको कुछ ना कुछ सीखते हैं कि क्या करना है और क्या इम्प्रूव करना है। जब भी हमारी प्रॉब्लम्स आते हैं, लेडीज प्रॉब्लम्स जब आते हैं, तो हम क्या और करना चाहिए वो सब। तो बस वो सबकी खुशी था आज। वो
4: बिल्कुल,
5: खाना,
4: वो रिलीज था एक पोडियम पे। मीरा,
5: हाँ
4: 3 गोल्ड,
5: जी
4: 3rd गोल्ड था आज आपका।
5: जी
4: कौन सा इसमें से कौन सा बेस्ट गोल्ड मेडल रहा है आपका तीनों में से?
5: मैम, ये वाला मुझे ज्यादा मतलब खुशी हुआ, क्योंकि मैं थर्ड लगातार मेडल जीतना, और इस बार मुझे बहुत सारे फेस करना पड़े थे कि इंजुरी से लेके और बॉडी वेट कंट्रोल करके रखना, और ऊपर से मेरा एज ज्यादा हुआ है, तो कैसा कैसा मुझे मेंटेन करना, ट्रेनिंग को कैसा, पहले जैसा हम ट्रेनिंग लोड लेते थे ऐसे भी नहीं लोड ले पाते थे कि ट्रेनिंग में कैसा ट्रेनिंग करना है वो सब। तो उस सबको मैनेज करके रख के मैंने ये अचीव किया है, तो ये सबसे ज्यादा मतलब लगती हूँ मुझे कि हाँ, कि थर्ड टाइम मैंने गोल भी लिया है और इस बार अच्छा मतलब फील हुआ है, मैंने कुछ इंडिया के लिए करके दिखाया है।

0: यकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: What seems settled for me is unfinished business. Welcome back. Well, India opened its gold medal account at the 2026 Commonwealth Games as Mirabai Chanu won the women's 48kg weightlifting title with a record-breaking performance. Mirabai Chanu lifted 85kg in the snatch and 105kg in the clean and jerk for a total of 190kg, setting new Commonwealth Games and Commonwealth records. The win gave India its first gold of the Games and marked Chanu's third consecutive Commonwealth Games gold and fourth CWG medal overall. Our Prime Minister has congratulated her on her historic achievement. By the way, you must note, you know, Mirabai Chanu revealed that she had not eaten for 2 days before clinching India's first gold medal at the Commonwealth Games 2026, producing another remarkable display to dominate the women's 48kg weightlifting event in Glasgow. After her victory, my colleague Rika Roy spoke exclusively to Mirabai Chanu. Listen in.
2: मीरा, हम हमेशा से हंसते हुए मीराबाई को देखा है, आज पोडियम पर रोते हुए मीराबाई को हमने देखा। क्या बहुत ज्यादा इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि बीच में इंजरीज हुए थे, वेट कैटेगरीज चेंज करना था, क्या मतलब क्या सोच रहे थे इस दौरान आप?
3: बहुत कुछ आ रहा था मन में, कि खुश भी दुख भी, उनके वेट कंट्रोल करके रखना मेरे लिए बहुत बड़ा अचीव ऐसा लग रहा था, कि अब मुश्किल भी थे और ये जरूरी भी थे मेरा। तो वो सब जब पोडियम में खड़े थे तो हमने क्या क्या फेस किया था, कितना इंजरी का मैं फेस करना पड़ा और बॉडी वेट लाने के लिए, मतलब क्या खाना क्या नहीं खाना वो सब पहले से ही मतलब ज्यादा कंट्रोल करना पड़ रहा था, तो वो सब याद आ रहे थे। तो जब मेडल और पोडियम में जब खड़े थे और हमारी फ्लैग जो इंडिया का फ्लैग ऊपर आ रहा था और नेशनल एंथम जब गा रहे थे, तो अंदर से मतलब बस आ गए थे, मैं खुशी का ही था आंसू तो रुक नहीं पाए थे मैं, तो बहुत खुश हो गया था, मतलब खुशी का ही आंसू था। तो मेरा पेन जो हुआ था ये सब लेके आज ये मेडल के लिए ही मैंने मतलब पूरा मेहनत किया था, तो बस उसी की खुशी था।
2: मेरा, मैं 2 साल पहले की बात करूंगी आपसे, मैं लास्ट मिली थी आफ्टर द ओलंपिक गेम्स, फोर्थ आए थे आप पेरिस में, और उस दौरान आपको पीरियड्स का बहुत पेन हो रहा था उस दिन, जिस दिन कॉम्पिटिशन था, मुझे वो दिन बहुत याद आ रहा है आज। वहां लेके अब तक आपको लगता है कि मतलब आपने पूरा जो कंपटीशन का साइकिल चेंज कर दिया है, अपने आप को विंडिकेट किया है दैट आई बिलोंग टू दिस स्टेज?
3: जी हाँ, बहुत कुछ मैंने फेस किया है पेरिस ओलंपिक में, सबको पता है कि मैं कैसा मतलब रह गई थी, 1 kg में मेरा मेडल छूट गए थे, तो उस सबको अभी तक मैं याद करती हूँ कि मैंने क्या क्या उसी टाइम में क्या क्या फेस किया था। इंजरी भी थी, हिप जॉइंट में पेन हो रहा था और उसी दिन पीरियड्स भी थे, तो सबको पता है कि जब हमारी जो प्रॉब्लम होते हैं उसी टाइम में हमको क्या क्या मतलब पेन होते हैं, कैसे क्रेम होते हैं वो सब, और बॉडी पूरा लूज हो जाते हैं। तो उसी टाइम में भी मुझे कॉम्पिटिशन खेलना है, फाइट करना है इंडिया के लिए, वेट लिफ्टिंग के लिए, तो वो सब हाँ, एक प्लेयर्स में तो ये सब फेस करना बहुत जरूरी होता है, वो भी मैंने फेस किया है, फेस करके ओलंपिक तक पहुंचा। पर हाँ, मेडल लेना और जीतना हारना ये तो हमारी लाइफ में होता है, एक प्लेयर्स की लाइफ में होता है, तो उसी में से बहुत सारी कुछ सीखने को मिलते हैं, कि हर कंपटीशन में हमको कुछ ना कुछ सीखते हैं कि क्या करना है और क्या इम्प्रूव करना है। जब भी हमारी प्रॉब्लम्स आते हैं, लेडीज प्रॉब्लम्स जब आते हैं, तो हम क्या और करना चाहिए वो सब, तो बस वो सबकी खुशी था आज
2: बिल्कुल वो बिलीज था एक पोडियम पे,
3: हाँ
2: मेरा 3 गोल्ड, थर्ड
3: जी
2: गोल्ड था आज आपका।
3: जी
2: कौन सा इसमें से कौन सा बेस्ट गोल्ड मेडल रहा है आपका तीनों में से?
3: मैम, ये वाला मुझे ज्यादा मतलब खुशी हुआ, क्योंकि मैं थर्ड लगातार मेडल जीतना, और इस बार मुझे बहुत सारे फेस करना पड़े थे कि इंजुरी से लेके और बॉडी वेट कंट्रोल करके रखना, और ऊपर से मेरा एज ज्यादा हुआ है, तो कैसा कैसा मुझे मेंटेन करना, ट्रेनिंग को कैसा, पहले जैसा हम ट्रेनिंग लोड लेते थे ऐसे भी नहीं लोड ले पाते थे कि ट्रेनिंग में कैसा ट्रेनिंग करना है, वो सब तो उस सबको मैनेज करके रख के मैंने ये अचीव किया है, तो ये सबसे ज्यादा मतलब लगती हूँ मुझे कि हाँ, कि थर्ड टाइम मैंने गोल भी लिया है और इस बार अच्छा मतलब फील हुआ है, मैंने कुछ इंडिया के लिए करके दिखाया है।
1: Alright, let's switch tracks now. The war in Ukraine has once again put civilians and international crews at risk. After a merchant vessel carrying Indian nationals was hit at the strategic Black Sea port of Odessa. This strike comes as Russia and Ukraine continue a fierce battle over control of key infrastructure, with both sides claiming major attacks against each other. Here are the details you need to know this morning.
4: A merchant vessel carrying 4 Indian nationals has been hit at Ukraine's port of Odessa. The Indian embassy in Kiev says 2 crew members are safe, while details about the remaining 2 are still awaited. The embassy says it is closely monitoring the situation and is in contact with authorities for further updates. The vessel MV Aegean Ragnar was struck as attacks on Ukrainian port infrastructure continue. Odessa has repeatedly come under fire since the conflict began in 2022 due to its strategic importance for trade and military logistics. Russia says its forces targeted Ukrainian military-linked infrastructure along the Black Sea coast. Moscow has claimed strikes on ports including Odessa, Chornomorsk and Izmail. Ukraine, meanwhile, says it has pushed back Russian offensives and destroyed Russian equipment. Zelensky has also accused Moscow of seeking additional military support from North Korea. This includes troops and missile systems. According to Zelensky, preparations for these additional forces are underway in Russia's Voronezh region, which is close to the Ukrainian border. The region is a key industrial and military hub with aerospace and defense manufacturing facilities. Bureau report for NDTV World.
1: As always, the news continues right here on NDTV 24/7. My colleague Vasudha Venugopal joins you live from outside the Parliament premises in a moment. Do stay tuned.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा,
6: सबका राजा आ गया मसाला।
7: जानते हैं मैं एलिट

0: देश का टायर जेके टायर।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा,
3: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ। 17 years of experience, largest

0: mother of democracy is India, sir. The capital city of the mother of democracy has been drenched with the blood of the innocent children of this country. Innocent children.
1: Sir, you please take your seat. Sir, you raise the relevant point. Don't make this house as a political forum.
0: The Home Minister of the country, has stated that students are above all posts.
1: The house will be made at 2 p.m. The house will meet at...
2: Lemon mein threadbare. बहुत खुली यहाँ बहस होना चाहिए, सबका मत आना चाहिए और एकजुट से इस बिल को पारित करना चाहिए।
3: अब जो है विपक्ष की मांग और बढ़ गई है, अब अमित शाह जी के इस्तीफे की मांग बढ़ गई
2: है। यहाँ से विषय भटकने का कोशिश ना करें, मैं फिर से कांग्रेस पार्टी और कुछ दल है उनको कहना चाहता हूँ, विषय को भटकने मत दीजिए। इस वक्त स्टूडेंट का इंटरेस्ट, देश में जो एग्जामिनेशन होने का जो प्रक्रिया आज तक हमने देखा है, उसको मजबूती से जो रिफॉर्म्स लाया है, इस पे चर्चा होना ये सबसे प्राथमिकता होना चाहिए इस वक्त। मुद्दे को भटकाने के लिए और मुद्दे चेंज करने के लिए कोई कोशिश ना करें। इस वक्त स्टूडेंट का वेलफेयर, स्टूडेंट का फ्यूचर और स्टूडेंट का इंटरेस्ट, ये हम सबका प्राथमिकता होना चाहिए। पार्लियामेंट में इस वक्त कोई दूसरा विषय लेकर के नहीं आना चाहिए, नहीं तो टॉपिक डाइवर्ट हो जाएगा।
4: प्रधानमंत्री से भी माफी मांगने की मांग कर रहे हैं।
2: अलग अलग ये जो बहाना बना रहे हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। हम बिल्कुल फोकस्ड है कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट के लिए जो बिल लाया है, ये जो बिल है इसको पारित करना हमारा प्राथमिकता है।
5: सर, स्पीकर ने जो हंगामा कर रहे हैं सांसद, उनको लेकर कार्रवाई करने की बात भी कही है कि अगर नहीं मानते तो कार्रवाई की जाएगी।
2: नहीं, अगर कुछ एमपी जो डिस्कशन ही नहीं चाहता है वो अपने आप को बहुत
6: पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ वॉरफेयर मीन बिल 2024। थैंक यू स्पीकर सर।
7: इस पर विरोध करना चाहते हैं? इस विषय पर बोलना चाहते हैं? सौगत राय जी, एनके प्रेमचंदन जी, मनीष तिवारी जी, मणिकम टैगोर जी, विजय कुमार के काव्या, माननीय सदस्यगण, जो भी माननीय सदस्य इस विधेयक पर
8: पहले
7: बोलना चाहते हैं, प्रश्न ये कि विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके प्रश्न हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हावालों के पशुआ अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, आप विधेयक पूरा स्थापित करें।
6: आई स्पीकर सर, आई इंट्रोड्यूस द बिल।
7: माननीय सदस्यगण, लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर संशोधन प्रस्तुत करने के लिए मैं 1 बजे तक का समय देता हूं। माननीय सदस्यगण, ये महत्वपूर्ण विधेयक है और इस विधेयक से जो सदन की मंशा है, देश की मंशा है, उस पर व्यापक चर्चा होगी। सभी दल के लोग इस विषय पर बहुत दिनों से मांग कर रहे थे और ये एक सुधार का प्रथम कदम है। मैं सोचता हूं कि सदन पर इस पर चर्चा हो, सब अपने मत विचार व्यक्त करें ताकि मत विचार से हम किस तरीके से इस विधेयक के माध्यम से देश के अंदर परीक्षा पर लीक को रोकने का एक समुचित कदम उठा सकते हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से आग्रह है, मैं आपको पर्याप्त समय दूंगा इस विषय पर। सदन की जितनी सहमति होगी उतना समय मैं आपको इस विधेयक पर चर्चा करने के लिए दूंगा। मेरा आपसे आग्रह है, ये महत्वपूर्ण विधेयक पर आप सदन का सहयोग करें और इस पर चर्चा करें। चर्चा करना चाहते हैं, आप बहुत दिनों से मांग कर रहे थे जिन विषयों पर, उसके विषय पर चर्चा है आज। विधेयक है और विधेयक के अलावा भी आप जो जो सुझाव दोगे संसद के अंदर, निश्चित रूप से उन सुझावों पर सरकार अमल लाने का प्रयास करेगी। यही लोकतंत्र है, सबके मत सबके विचार आए, और लोकतंत्र की यही प्रक्रिया में मैं सदन से अपेक्षा करता हूं कि आप नारेबाजी तख्तियों की जगह चर्चा करें, संवाद करें, अपने मत और विचारों को रखें। आप नहीं चर्चा करना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
8: Right, Parliament there adjourned again. This is as the Anti-Paper League Bill was introduced by the Minister Jitendra Singh there, who stood up despite the opposition sloganeering. Remember, the big issue today in Parliament has been the use of force against the protesters recently. The Congress, Samajwadi Party, opposition parties raising the issue of pellet guns being used against the protesters during the march to Parliament on the 20th of July. So that is the big issue right now. But the government also determined to introduce the bill against paper leaks as promised action against the issue of paper leaks that has led to the protest that took place. Well, let's go across to Aishwarya now, who's been tracking all these developments. And Aishwarya, even as the opposition is protesting and raising the issue of pellet guns and AK being used against protesters here in Delhi and AK-47 in Bihar, the government meanwhile has introduced the bill against paper leaks. So we heard Kiran Rijiju also talking about, let us remain focused on the promise that we've made to students and not divert to other issues.
9: Well, that's right. The opposition continued their disruption in the House. They are demanding a statement either from the Prime Minister or Home Minister of the country on the police alleged brutality on the students while they were protesting towards the Parliament on July 20th, and also an apology from the Prime Minister over the paper leaks that have happened all across the country, because of which the students had committed suicide in the past few months. And Prime Minister has to come to Parliament and answer that before having any sort of discussion is what the Congress party has to say. The Congress leaders, in fact, went on to say that

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में,
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा।
10: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
11: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Aisha Sehgal, and Sandy Howard.
10: The show that sets the prime time agenda.
11: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
10: Join me, Aisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
12: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
13: स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ऑफ द न्यूज रूम टू द कोर ऑफ द स्टोरीज शेपिंग योर वर्ल्ड। जॉइन मी गार्गी राउत एज आई ट्रैक ऑल द डेवलपमेंट्स एज दे ब्रेक। लाइव फ्रॉम द एनडीटीवी न्यूज रूम, वीकडेज एट 4 PM।

0: News now from the Commonwealth Games. In India opened its gold medal account at the 2026 Commonwealth Games as Mirabai Chanu won the women's 48-kilo weightlifting title with a record-breaking performance. Chanu lifted 85 kilos in the snatch and 105 kilos in the clean and jerk for a total of 190 kilos, setting a new Commonwealth Games and Commonwealth records. The win gave India its first gold of the Games and marked Chanu's third consecutive Commonwealth Games gold and the fourth Commonwealth Games medal overall. Prime Minister Modi congratulated Chanu on her historic achievement. After her victory, NDTV sports editor Rika Roy spoke exclusively to Mirabai Chanu on her goal. Listen in.
1: Mira, hum hamesha se haste hue Mirabai ko dekha hai. Aaj podium par rote hue Mirabai ko humne dekha. क्या बहुत ज्यादा इमोशनल मोमेंट था क्योंकि बीच में इंजरीज हुए थे, वेट कैटेगरीज चेंज करना था, क्या मतलब क्या सोच रहे थे आप?
2: बहुत कुछ आ रहा था मन में कि खुश भी दुख भी, उनके वेट कंट्रोल करके रखना मेरे लिए बहुत बड़ा अचीव ऐसा लग रहा था कि अब मुश्किल भी थे और ये जरूरी भी थे मेरा. तो वो सब जब पोडियम में खड़े थे तो हमने क्या क्या फेस किया था, कितना इंजुरी का मैं फेस करना पड़ा और बॉडी वेट लाने के लिए मतलब क्या खाना क्या नहीं खाना वो सब पहले से ही मतलब ज्यादा कंट्रोल करना पड़ रहा था, तो वो सब याद आ रहे थे. तो जब मेडल और पोडियम में जब खड़े थे और हमारी फ्लैग जो इंडिया का फ्लैग ऊपर आ रहा था और नेशनल एंथम जब गा रहे थे तो अंदर से मतलब बस आ गए थे, मैं खुशी का ही था आंसू तो रुक नहीं पाए थे मैं, तो बहुत खुश हो गया था, मतलब खुशी का ही आंसू था. तो मेरा पेन जो हुआ था ये सब लेके आज ये मेडल के लिए ही मैंने मतलब पूरा मेहनत किया था, तो बस उसी की खुशी था.
1: मेरा मैं दो साल पहले की बात करूंगी आपसे, मैं लास्ट मिली थी आफ्टर द ओलंपिक गेम्स, फोर्थ आए थे आप पेरिस में और उस दौरान आपको पीरियड्स का बहुत पेन हो रहा था उस दिन जिस दिन कॉम्पिटिशन था, मुझे वो दिन बहुत याद आ रहा है आज. वहां लेके अब तक आपको लगता है कि मतलब आपने पूरा जो कॉम्पिटिशन का साइकिल चेंज कर दिया है, अपने आप को विंडिकेट किया है दैट आई बिलोंग टू दिस स्टेज?
2: जी हाँ, बहुत कुछ मैंने फेस किया है पेरिस ओलंपिक में. सबको पता है कि मैं कैसा मतलब रह गई थी, 1 kg में मेरा मेडल छूट गए थे, तो उस सबको अभी तक मैं याद करती हूँ कि मैंने क्या क्या उसी टाइम में क्या क्या फेस किया था. इंजुरी भी थी, हिप जॉइंट में पेन हो रहा था और उसी दिन पीरियड्स भी थी, तो सबको पता है कि जब हमारी जो प्रॉब्लम होते हैं उसी टाइम में हमको क्या क्या मतलब पेन होते हैं, कैसे क्रेम होते हैं वो सब, और बॉडी पूरा लूज हो जाते हैं. तो उसी टाइम में भी मुझे कंपटीशन खेलना है, फाइट करना है इंडिया के लिए, वेट लिफ्टिंग के लिए, तो वो सब हाँ एक प्लेयर्स में तो ये सब फेस करना बहुत जरूरी होता है. वो भी मैंने फेस किया है, फेस करके ओलंपिक तक पहुंचा. पर हाँ, मेडल लेना और जीतना हारना ये तो हमारी लाइफ में होते हैं, एक प्लेयर्स की लाइफ में होते हैं, तो उसी में से बहुत सारी कुछ सीखने को मिलते हैं कि हर कंपटीशन में हमको कुछ ना कुछ सीखते हैं कि क्या करना है और क्या इम्प्रूव करना है. जब भी हमारी प्रॉब्लम्स आते हैं, लेडीज प्रॉब्लम्स जब आते हैं तो हम क्या और करना चाहिए वो सब, तो बस वो सबकी खुशी था आज.
1: रिलीज था एक पोडियम पे. हाँ, तीन गोल्ड, थर्ड गोल्ड था आज आपका. कौन सा जी, कौन सा इसमें से कौन सा बेस्ट गोल्ड मेडल रहा है आपका तीनों में से?
2: मैम ये वाला मुझे ज्यादा मतलब खुशी हुआ क्योंकि मैं थर्ड लगातार मेडल जीतना, और इस बार मुझे बहुत सारे फेस करना पड़े थे कि इंजुरी से लेके और बॉडी वेट कंट्रोल करके रखना, और ऊपर से मेरा एज ज्यादा हुआ है, तो कैसा कैसा मुझे मेंटेन करना, ट्रेनिंग को कैसा, पहले जैसा हम ट्रेनिंग लोट लेते थे ऐसे भी नहीं लोट ले पाते थे कि ट्रेनिंग में कैसा ट्रेनिंग करना है वो सब, तो उस सबको मैनेज करके रख के मैंने ये अचीव किया है, तो ये सबसे ज्यादा मतलब लगती हूँ देख के। हाँ, कि थर्ड टाइम मैंने गोल भी लिया है और इस बार अच्छा मतलब फील हुआ है, मैंने कुछ इंडिया के लिए करके दिखाया है।
0: And from that happy news now to news of the war in Ukraine. And the war has once again put civilians and international crews at risk after a merchant vessel carrying Indian nationals was hit at a strategic Black Sea port of Odessa. The strike comes as Russia and Ukraine continue a fierce battle over control of key infrastructure, with both sides claiming major attacks against one another. Take a look.
3: A merchant vessel carrying four Indian nationals has been hit at Ukraine's port of Odessa. The Indian embassy in Kiev says two crew members are safe, while details about the remaining two are still awaited. The embassy says it is closely monitoring the situation and is in contact with authorities for further updates. The vessel MV Aegean Ragnar was struck as attacks on Ukrainian port infrastructure continue. Odessa has repeatedly come under fire since the conflict began in 2022 due to its strategic importance for trade and military logistics. Russia says its forces targeted Ukrainian military-linked infrastructure along the Black Sea coast. Moscow has claimed strikes on ports including Odessa, Chornomorsk and Izmail. Ukraine, meanwhile, says it has pushed back Russian offensives and destroyed Russian equipment. Zelensky has also accused Moscow of seeking additional military support from North Korea. This includes troops and missile systems. According to Zelensky, preparations for these additional forces are underway in Russia's Voronezh region, which is close to the Ukrainian border. The region is a key industrial and military hub with aerospace and defense manufacturing facilities. Bureau report for NETV World.
0: All right, with that, time for us to slip into a short break. We'll be back with all the top news stories. Don't go anywhere.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
3: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933 बरसों से सरसों।
4: कुछ तो बात है इस तेल में।
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा क्या स्वाद है।
7: अरे मेरे राजा।
8: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
9: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Aisha Sehgal, Sandy Howard.
8: The show that sets the prime time agenda.
9: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
8: Join me, Aisha Sehgal, on Prime 5 only on NDTV 24/7.
10: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
11: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
4: कुछ तो बात है इस दिल में।
12: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी। ये आपके लिए।
4: कुछ तो बात है इस दिल में।
3: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
8: सरसों से सरसों।
13: From the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.

0: proposes jail terms of 5 to 10 years and fines of up to 50 lakh for those involved in paper leaks or use of unfair means in public examinations. For organized paper leak racket, the bill proposes a minimum 7-year jail term and fines of up to 10 crore. The bill was introduced amid opposition sloganeering, with the government pressing ahead with its legislation despite the ruckus in the House.
1: I rise to move for leave to introduce the public examinations bracket prevention of unfair means amendment bill 2026 to amend the public examination prevention of unfair means bill 2024. Thank you, Speaker sir.
2: Sugat Rai ji, ek manya sadasyagan, जो भी माननीय सदस्य इस विधेयक पर
3: पहले
2: बोलना चाहते हैं, प्रश्न ये कि विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हां गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हां वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, आप विधेयक पूरा स्थापित करें।
4: देखिए, शिक्षा विभाग के सुधार को लेकर ये सरकार गंभीर नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी जी गंभीर नहीं है। वो एक नए हाई पावर कमीशन की बात करती है, लेकिन 2024 में जब राधाकृष्णन की हाई कमीशन की रिपोर्ट बनी तो उस रिपोर्ट का क्या हुआ? अब 2 साल बाद दोबारा एक हाई कमीशन बना रहे हैं। एक फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी सीबीआई ने के द्वारा जो जांच हुई उसमें एक आदमी जो मूल अपराधी था वो फ्री हो गया, क्योंकि उसके विरोध तहकीकात ढंग से नहीं हुई। तो ये सरकार गंभीर नहीं है। 20 जुलाई को बच्चों के साथ जो मारपीट हुई उसके संदर्भ में भी कोई स्पष्टीकरण नहीं आज तक। उनका उद्देश्य बस यही है कि आरएसएस के लोग कैसे यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स बने, प्रिंसिपल्स बने।
5: अभी तो फिलहाल जो छात्र नौजवानों के साथ कई जगह पर सरकार केस करा रही है, मुकदमे लिखा रही है। सरकार को चेतना को चुनौती नहीं देनी चाहिए, और सरकार के लिए चेतना ही चुनौती बन गई। और अभी तो बात हम सब पॉलिटिकल पार्टी के लीडर बैठ के बात करेंगे क्या तय करना है।
6: छात्रों के दबाव से, संपूर्ण विपक्ष के दबाव से सरकार मान गई और इस्तीफा कराया, ठीक है। अब छात्रों की कुछ और मांगे भी हैं, लेकिन जो भी केंद्र सरकार कह रही है कि हम उसमें अभी कैबिनेट से उन्होंने कुछ पारित कराया है, उसको उस पर बहस कराएगी और उसको इंट्रोड्यूस करेगी, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। सजा का प्रावधान किया है, अच्छी बात है, क्योंकि इसे गंभीरता से लेनी चाहिए। लेकिन सिर्फ सजा से भी नहीं होगा, कई तो कितनी सारी सजाएं हैं, आप देख रहे हैं कि पूरे देश में कितने कानून हैं, जिसका भी अगर जो लोग ये सब करते हैं उसका डर भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो मुझे लगता है कि सरकार को तटस्थ रहना पड़ेगा।
7: ऑन द वन हैंड द प्राइम मिनिस्टर हैज बीन पर्सनली कम्युनिकेटिंग विद जेन जी यंगस्टर्स, हिज गवर्नमेंट इज रिसेप्टिव, इज रिस्पॉन्सिव, इज सेंसिबल, सेंसिटिव, डेमोक्रेटिक, प्रैग्मेटिक एंड अकाउंटेबल। बट ऑन द अदर हैंड, लुक एट द ऑपोजिशन, दे डोंट वांट टू डिस्कस ऑन द न्यू लॉ दैट विल मेक इट impossible for paper leaks. They don't want a stringent law. They don't want to discuss about how the high powered committee will introduce tech reforms under Nandan Nilekani. What do they want to do? They want to abolish NEET. That is the demand of DMK. And abolishing NEET means what? It means going back to the pre-NEET system. And therefore, this is no longer about NEET students. It has become about their political capital and their personal vested interests.
8: I really want to ask the government, what has happened to the K. Radhakrishnan committee, which was appointed clearly 2 years before? That committee submitted a report with 184 pages. The government has been sitting on it.
0: Now, Prime Minister Modi sharpened the government's focus on exam reforms over the past few days. The Prime Minister repeatedly assured students that paper leaks will not be tolerated and that systemic changes are underway. The Prime Minister announced a high-powered task force and stringent anti-cheating law as well. The task force has been mandated to recommend technology-driven and structural reforms to strengthen integrity, security and transparency of the examination system. Headed by Nandan Nilekani, the high-powered task force includes a former ISRO chairman, Dr. S. Somnath, former IB director, Tapan Deka, IIT Madras director, Professor V. Kamakoti, former education secretary, Anita Karwal, and logistics expert Amrit Lal Meena as well.
3: Friends, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है. जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया वे जेलों में सड़ रहे हैं. हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं. हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं. लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है. हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज़्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा. बहुत बहुत धन्यवाद.
9: ये 12 साल पहले भी हो सकता था ये, ठीक है. तो हम ये 12 साल पहले भी हो सकता था अगर ये चीज़ें करनी थी तो इतना तमाशा करने की क्या ज़रूरत थी. इतने बच्चे मर गए इसी के अंदर, कितने माँ बाप के पैसे लगे, बेचारे गरीब कहाँ कहाँ से कर्जा लेके बच्चों को पढ़ा रहे थे. तो ये पहले भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए था.
0: So after days of protests over examination reform with students taking to the streets demanding the minister step down, Prime Minister Modi then chose an unusual platform for him at least to speak directly to India's students. Instagram, not parliament, not a rally, and no, not a press conference. Three videos. The audience was clearly young India who was protesting, who was taking to the streets. But the big question is, will this build trust? Here's the full story. Thank you.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में,
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा।
10: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
11: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Aisha Sehgal, and Sandy Howard.
10: The show that sets the prime time agenda.
11: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
10: Join me, Aisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
12: ए युग तुम्हारा, ए रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान।
13: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद। तभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़े, vandebharatam.org पर रजिस्टर करें।
14: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज।
15: स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ऑफ द न्यूज रूम टू द कोर ऑफ द स्टोरीज शेपिंग योर वर्ल्ड। जॉइन मी गार्गी राउत एज आई ट्रैक ऑल द डेवलपमेंट्स एज दे ब्रेक। लाइव फ्रॉम द एनडीटीवी न्यूज रूम, वीकडेज एट 4 PM।

0: खास सुबह।
1: वाओ मामा क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा।
2: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल में प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को

0: बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
1: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
2: कुछ तो बात है इस दिल में।
3: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
4: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Aisha Sehgal, on Saturday.
3: The show that sets the prime time agenda.
4: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
3: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
5: ए युग तुम्हारा, ए रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान।
6: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद। तभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़े vandebharatam.org पर रजिस्टर करें।
7: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
8: स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ऑफ द न्यूज रूम टू द कोर ऑफ द स्टोरीज शेपिंग योर वर्ल्ड। जॉइन मी गार्गी राउत एज आई ट्रैक ऑल द डेवलपमेंट्स एज दे ब्रेक। लाइव फ्रॉम द एनडीटीवी न्यूज रूम, वीकडेज एट 4 PM।

0: And we have some breaking news coming in for you. NDA Parliamentary Party meeting will take place tomorrow at 9:30 a.m. Mangal Milan gathering at the Parliament House Library, which will take place at 9:30 a.m. Prime Minister Modi will be addressing the meeting. MPs may be briefed on the NEET reforms. This will, of course, take place tomorrow at 9:30 a.m. when at the Parliamentary Library building in New Delhi. This at a time when the centre has taken huge steps towards education reforms. And we're also learning that the meeting will be chaired by Prime Minister Modi, and the MPs will further be briefed on the NEET reforms. This also at a time when today the anti-paper leak amendment bill has been put forth in the Lok Sabha. This Mangal Milan meeting will take place tomorrow. This at a time when the centre has taken multiple steps in safeguarding the NEET paper leak and to eradicate NEET paper leak here in India. This is also comes on a day when the centre has perhaps put forth the anti-paper leak amendment bill, which of course punishes people who leak the paper for 10 years and also fine. This is the key NDA meeting, and it comes tomorrow at 9:30 a.m. where this will take place at the library, which will further serve dual purpose, one at a time, and the centre's approach towards the students in eradicating paper leak, especially on the NEET reforms. I'll go across to my colleague Himanshu Kumar on this. Himanshu, tell us more about this Parliamentary House meeting on Mangal Milan. We also learned that the MPs will be briefed on NEET reforms. All right, we'll come back to you shortly. The Lok Sabha briefing has started. Just take a listen to what is happening in the lower house.
1: माननीय सदस्य जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे व्यक्तिगत रूप से अनुमोदित पाठ सदन के पटल पर रख सकते हैं। आइटम नंबर 15 लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026। माननीय सदस्यगण, लोक परीक्षा अनुचित साधारण निवारण संशोधन विधेयक 2026 हमारे देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य, उनकी मेहनत और उनकी आकांक्षाओं से जुड़ा अत्यधिक महत्वपूर्ण विधेयक है। ये विधेयक पेपर लीक जैसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने, दोषियों के विरुद्ध कठोर दंड प्रावधान कर देश के करोड़ों युवाओं के हितों की रक्षा और इस दिशा में एक महत्वपूर्ण विधेयक है। मेरा मानना है, सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है, इस विधेयक पर चर्चा होनी चाहिए। सभी दल के सदस्य इस विधेयक पर अपने चर्चा दें। इस विधेयक पर पहली बार 91 संशोधन भी आए, इससे मेरा आग्रह है इस पर सबके विचार और मत आना चाहिए। लोकतंत्र में सबके मत और विचार आना ही लोकतंत्र की ताकत होती है, इसलिए विधेयक पर आपके विचार आए। नारेबाजी तख्तियां लहराने से विधेयक पर विचार नहीं आता। मैं आग्रह करता हूं आपसे कि इस विधेयक पर 6 घंटे और इससे भी अधिक माननीय सदस्य का विचार रखना चाहेंगे तो मैं 6 घंटे से भी बढ़ाकर जो सदन का मत होगा उस मत के अनुसार समय बढ़ा दूंगा, ताकि सबके मत आए, सबके विचार आए और देश के विद्यार्थी जो विधेयक आ रहे हैं निश्चित रूप से उसमें प्रभावी कदम उठाएं, उसमें मत जाए। आप जाइए, इस विधेयक पर अपने विचार मत व्यक्त कीजिए, नारे नहीं। सदन में विधेयक चर्चा के लिए आपको चुनकर भेजा है। मेरा आग्रह, सदन की कार्रवाई

0: पार्टी को फिर से रिक्वेस्ट करता हूं अपने साथियों को समझाइए और बिल पर हम चर्चा शुरू करें। स्पीकर साहब ने जो टाइम तय करेगा हम लोग सब मंजूर है।
1: देखिए, शिक्षा विभाग के सुधार को लेकर ये सरकार गंभीर नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी जी गंभीर नहीं है। वो एक नए हाई पावर कमीशन की बात करती है, लेकिन 2024 में जब राधाकृष्ण की हाई कमीशन की रिपोर्ट बनी तो उस रिपोर्ट का क्या हुआ? अब दो साल बाद दोबारा एक हाई कमीशन बना रहे हैं, एक फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी सीबीआई ने के द्वारा जो जांच हुई उसमें एक आदमी जो मूल अपराधी था वो फ्री हो गया क्योंकि उसके विरोध तहकीकात ढंग से नहीं हुई। तो ये सरकार गंभीर नहीं है। 20 जुलाई को बच्चों के साथ जो मारपीट हुई उसके संदर्भ में भी कोई स्पष्टीकरण नहीं आज तक। उनका उद्देश्य बस यही है कि आरएसएस के लोग कैसे यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स बने, प्रिंसिपल्स बने।
2: अभी तो फिलहाल जो छात्र नौजवानों के साथ कई जगह पर सरकार केस करा रही है, मुकदमे लिखा रही है, सरकार को चेतना को चुनौती नहीं देनी चाहिए और सरकार के लिए चेतना ही चुनौती बन गई। और अभी तो बात हम सब पॉलिटिकल पार्टी के लीडर बैठ के बात करेंगे क्या तय करना है।
3: छात्रों के दबाव से, संपूर्ण विपक्ष के दबाव से सरकार मान गई और इस्तीफा कराया, ठीक है। अब छात्रों की कुछ और मांगे भी हैं, लेकिन जो भी केंद्र सरकार कह रही है कि हम उसमें अभी कैबिनेट से उन्होंने कुछ पारित कराया है उसको, उस पर बहस कराएगी और उसको इंट्रोड्यूस करेगी, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। सजा का प्रावधान किया है, अच्छी बात है क्योंकि इसे गंभीरता से लेनी चाहिए, लेकिन सिर्फ सजा से भी नहीं होगा। कई तो कितनी सारी सजाएं हैं, आप देख रहे हैं कि पूरे देश में कितने कानून हैं जिसका भी, अगर जो लोग ये सब करते हैं उसका डर भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो मुझे लगता है कि सरकार को तटस्थ रहना पड़ेगा।
4: ऑन द वन हैंड द प्राइम मिनिस्टर हैज बीन पर्सनली कम्युनिकेटिंग विद जेंजी यंगस्टर्स, हिज गवर्नमेंट इज रिसेप्टिव, इज रिस्पॉन्सिव, इज सेंसिबल, सेंसिटिव, डेमोक्रेटिक, प्रैग्मेटिक एंड अकाउंटेबल। बट ऑन द अदर हैंड लुक एट द ऑपोजिशन, दे डोंट वांट टू डिस्कस ऑन द न्यू लॉ दैट विल मेक इट impossible for paper leaks. They don't want a stringent law. They don't want to discuss about how the high powered committee will introduce tech reforms under Nandan Nilekani. What do they want to do? They want to abolish NEET. That is the demand of DMK. And abolishing NEET means what? It means going back to the pre-NEET system. And therefore, this is no longer about NEET students. It has become about their political capital and their personal vested interests.
5: I really want to ask the government, what has happened to the K. Radhakrishnan committee, which was appointed clearly 2 years before? That committee submitted a report with 184 pages. The government has been sitting on it.
6: Moving on, fresh questions are being raised over the alleged use of force during the July 20th student protest in the national capital. Sources have now told NDTV that one rapid action force personnel has been identified as having fired 7 rounds from a pellet gun in Connaught Place. According to sources, 5 of those rounds struck protesters, while 2 did not hit anyone. The CRPF has now sought an explanation from the personnel concerned and has also initiated a detailed internal inquiry. Earlier, NDTV had reported that the RAF had ordered a review of its crowd control measures, with senior officers expressing concern over the alleged excessive use of force during the protest. The inquiry report is expected next week.
7: आप नौजवानों पर इस तरह से पैलेट गन्स चलाएं और सोचें कि पार्लियामेंट में उसकी आवाज़ नहीं उठेगी तो गलत है। जिस तरह से उनका इकबाल ख़त्म हो गया है, जिस तरह से छोटे छोटे बच्चे उनकी हंसी उड़ा रहे हैं, प्रधानमंत्री का जो नैतिक ताकत थी वो ख़त्म हो चुकी। अपॉलोजी तो करनी पड़ेगी, जिम्मेदारी और जवाबदेही पैलेट गन्स की लेनी पड़ेगी।
8: बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दा है देश के सामने कि एक शांतिपूर्ण आंदोलन जिसमें निहत्थे युवा शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे, उन पर पेलेट गन इस्तेमाल किया गया और रिपोर्ट आई है कि कनॉट प्लेस में 7 राउंड पैलेट गन के फायर हुए हैं और एक ऐसे युवा हैं जिनकी आंख में बहुत बड़ी चोट आई है और जो एक आंख से वो ब्लाइंडेड हो गए हैं, उनका विजन लॉस हो गया है। तो ये बहुत ही खतरनाक और बहुत ही गंभीर मुद्दा है।
9: जिस पेपर के बारे में आरोप लगाया जा रहा है, 2 सेंटर्स के अंदर कुछ बच्चे स्मार्ट पेन लेके अंदर चले गए, स्मार्ट पेन के जरिए उन्होंने बाहर पेपर की स्कैनिंग करके फोटो बाहर भेजने की कोशिश की ताकि बाहर से उनके आंसर्स आ सकें, चीटिंग करने की कोशिश की। वो 10-12 बच्चे जो भी थे वो उसी टाइम वहीं पकड़े गए, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। तो ये झूठा आरोप लगा रहे हैं पेपर लीक हो गया, क्योंकि इनके पास कुछ कहने को नहीं है। आम आदमी पार्टी शिक्षा, आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार में जब हमारी 2022 में सरकार बनी उसके पहले वाले साल में।
6: All right, moving on, and let's tell you more about what else has happened. The political row over the Sivan firing incident is now escalating after police personnel allegedly fired an AK-47 during a student protest in Bihar. The constable has since been suspended as the incident comes under scrutiny. Rahul Gandhi has now slammed the center over the incident, alleging that an AK-47 was fired at the protesting students, drawing a parallel with the alleged pellet gun used during the Delhi protest as well. He said that action should be taken against those who attack students and not the students themselves. Rahul also asserted that students' voices cannot be suppressed and demanded that Prime Minister Modi should apologize to them.
10: It has never happened in the history of India that the boys were beaten and they were dragged in the
11: pellets.
12: देश के किसी भी राज्य में, यहाँ तक दिल्ली में भी जो है AK-47 गोलियाँ नहीं चलाई गई हैं, तो बिहार राज्य में किसके आदेश से AK-47 जो है गोलियाँ जो है चलाई गई हैं। और गोलियों का अगर आप वो फुटेज अगर आप देखें तो कोई हवाई फायरिंग नहीं की गई है, निशाना लगा करके फायरिंग किया गया है और 3 छात्र जो हैं उनको गोलियां लगी हैं। जो मुख्यमंत्री हैं, क्या उनका आदेश था? ये तो मुख्यमंत्री जो सम्राट चौधरी जो हैं खुद ही आपराधिक छवि के हैं, जो पुलिस को भी जो है गुंडा बनाने का काम कर रहे हैं, तो इनको आकर के स्पष्ट करना चाहिए, बयान देना चाहिए कि किसके आदेश से ये हुआ। और हम तो इसकी न्यायिक जांच की मांग करते हैं।
13: भारतीय जनता पार्टी के शासन में हम देख ही रहे हैं कि कैसे युवाओं पर भी अत्याचार नहीं रुक रहा है, और जहां पैलेट्स जलाई गई बच्चों में दिल्ली में, और आप जैसे बता रहे हैं कि बिहार में AK-47 का प्रयोग है, तो ये बहुत ही निंदनीय घटना है। और एक लोकतंत्र में रहते हुए भी कहीं ना कहीं लोगों की जो स्वतंत्रता है, जो फ्रीडम है और जो स्पिरिट है, उसको मारा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में।
14: बहुत ही दुखद विषय है। कुछ समय पहले LOP आदरणीय राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार का ट्वीट किया है, जिस प्रकार का वक्तव्य दिया है, यह कहा है कि पुलिस ने छात्रों पर AK-47 से फायरिंग की है, मुझे लगता है ये न केवल इर्रेस्पॉन्सिबल अपितु एक तरह से ये पाप है। देश में इस प्रकार से हिंसा भड़काने की कोशिश, अराजकता भड़काने की कोशिश LOP राहुल गांधी कर रहे हैं, यह अपने आप में घोर अन्याय है।
15: नहीं देखिए, स्टूडेंट्स को लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि आप अपनी बात को अच्छे से मजबूती से रख सकते हैं। पीसफुल प्रोटेस्ट हर जगह स्वागत योग्य है, और लोकतंत्र में जो हमारे युवा है उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए भी युवाओं को पूरा अधिकार है अपनी बातों को रखने का। जहां पे AK-47 यूज हुआ है वो गलत है, उसके हम लोग खिलाफ है। और स्टूडेंट्स पे जिस तरीके से जगह जगह पे लाठी चार्ज की गई है वो भी गलत है, पर ये बात सोनम वांगचुक जी जो CJP के संस्थापक हैं वो भी, और CJP की जो प्रवक्ता है वो भी, ये बात को खुलेआम ये एक्सेप्ट किए हैं कि कई बार स्टूडेंट प्रोटेस्ट में एंटी सोशल एलिमेंट्स उपस्थित थे, तो वहां पे पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन किया गया।
16: पहली बात तो दिल्ली पुलिस ने जो बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज किया, लाठियों में कीले भी थी, पैलेट गन का प्रयोग हुआ, बिहार के अंदर AK-47 का प्रयोग हुआ छात्रों के ऊपर, ये कौन आदेश दे रहा है? और उसके बाद राह चलते भाजपा के नेता स्टूडेंट्स को बुला बुला के कैसे गालियां दे रहे हैं, ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं, ये वातावरण ऐसा किसने बनाया? गृह मंत्री जी को जवाब देना पड़ेगा।
6: Prime Minister Modi has now sharpened the government's focus on exam reforms. Over the past few days, Prime Minister Modi has repeatedly assured students that paper leaks will not be tolerated and that systemic changes are underway. Prime Minister Modi also announced a high power task force and a stringent anti-cheating law today as well. The task force has been mandated to recommend technology-driven and structural reforms to strengthen integrity, security and transparency of the examination system. Headed by Nandan Nilkani, the High Power Task Force includes former ISRO Chairman Dr. S. Somnath, former IB Director Tapandeka, IIT Madras Director Professor V. Kamakoti, former Education Secretary Anita Karwal and also logistics expert Amrit Lal Meena.
17: Friends, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है. जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया वे जेलों में सड़ रहे हैं. हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं. हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं. लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है. हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज़्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा. बहुत बहुत धन्यवाद.
18: ये 12 साल पहले भी हो सकता था ये, ठीक है. तो हम ये 12 साल पहले भी हो सकता था अगर ये चीज़ें करनी थी तो इतना तमाशा करने की क्या ज़रूरत थी. इतने बच्चे मर गए इसी के अंदर, कितने माँ बाप के पैसे लगे, बेचारे गरीब कहाँ कहाँ से कर्जा लेके बच्चों को पढ़ा रहे थे. तो ये पहले भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए था.
6: And well, NDTV spoke to IIT Madras director who's been included in the high task force on exam reform announced by Prime Minister Modi. Take a look.
19: The high power task force has been constituted for the National Testing Agency examination reforms. This is at the backdrop of the NEET paper leak that just happened, and of course also at the backdrop of the resignation of the education minister Dharmendra Pradhan. Now this multidisciplinary group is a domain of experts, and one such expert and the member of the task force is joining us, IIT Madras director Professor V. Kamakoti. Thank you for speaking to NDTV, Professor.
20: Yes,
19: Professor, first off, is this task force expected to recommend incremental changes or a complete redesign of how national entrance exams are conducted?
20: Any system evolves over a period of time, right? And that's how the examination system is also evolving. As you look at the latest All India survey on higher education, our gross enrollment ratio is now increased to 30% now, right? That it was around 20% some years back, and now it has increased to 30%. This essentially means more and more children are going to come into the higher education. It's a welcome, it's the most important aspect for our country. And so that means the examination systems have to scale. When I took JEE in 1985, there were 5,000 candidates. Now it is 1.5 million aspirants who wants to come into the engineering. So there are two aspects in which this need to progress. One is the technology aspect, another is the, making it leak-proof and transparent, right? So these two are very important. Technology intervention is extremely necessary in this context. So this is the reform has been happening over a period of time. When I wrote JEE in 1985, it was pen and paper. Then it became OMR. Then it became computer-based test. And there are were two very simple challenges here. If I'm ready to say I can do multiple sessions, or if my total number of people attempting is less than or equal to 3 lakhs, we can do it as a single session examination in computer-based test. When it is more than 5 lakhs today or 10 lakhs, like NEET, which is 22 lakhs, and there was a necessity that we need to do it in a single session, then it has to be YMR-based, where we need to print the question paper. So that's today's situation here. So given that this whole examination system has been evolving, so what was this committee, we will be doing, and of course you have to meet also. I mean, not just even yesterday, this thing came yesterday night. I've been talking more to the press rather than to the committee members. I'm not still spoken to even one of them.
6: We're slipping into a very short break. We'll come right back. Lots more lined up.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में,
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा।
10: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
11: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Aisha Sahil.
10: The show that sets the prime time agenda.
12: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
10: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
13: ए युग तुम्हारा, ए रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान।
14: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद। तभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़े, वंदे भारतम .org पर रजिस्टर करें।
15: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
16: From the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.

0: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
1: वाह मामा क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा,
2: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
3: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
4: कुछ तो बात है इस तेल में।
5: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
6: Hello and welcome to Watch Prime 5 with me, Aisha Sehgal.
5: The show that sets the prime time agenda.
6: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
5: Join me, Aisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
7: ए युग तुम्हारा, ए रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान।
8: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद। तभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़े vandebharatam.org पर रजिस्टर करें।
9: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज।
10: स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ऑफ द न्यूज रूम टू द कोर ऑफ द स्टोरीज शेपिंग योर वर्ल्ड। जॉइन मी गार्गी रावत एज आई ट्रैक ऑल द डेवलपमेंट्स एज दे ब्रेक। लाइव फ्रॉम द एनडीटीवी न्यूज रूम, वीकडेज एट 4 PM।

0: और देश को भी यही संदेश देंगे, इसीलिए हम यहाँ पर प्रणाम करने, उन्हें याद करने आए हैं।
1: सर, पूरा जो जर्नी रही, सबसे बड़ा इसमें अध्याय रहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। आपको क्या लगता है इस्तीफे के बाद अब ये सिस्टम में वो सुधार जो जरूरी थे वो हो जाएंगे? इस्तीफे पर क्या कहना है आपका?
0: मुझे पूरी उम्मीद है, वरना इस्तीफे का कोई मतलब नहीं है। इस्तीफा एक शुरुआत है, इसके बाद कबूल होने के बाद इसका इलाज हो तो हमारा देश एक बेहतर देश बनेगा, जो कि मेरे ख्याल से शुरू हो रहा है। अभी इस पे चर्चा चल रही है और मुझे उम्मीद है एक बहुत ही सकारात्मक चर्चा के बाद देश के लिए जो भी उपयुक्त हो उसे अपनाया जाएगा और प्यार मोहब्बत से हम एक बेहतरीन प्रणाली को अपना पाएंगे।
1: सर, आज बिल भी लाया जा रहा है सर, पार्लियामेंट में बिल भी लाया जा रहा है।
0: बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। उस पर चर्चा हो और चर्चा के बाद जो भी उपयुक्त हो अच्छी तरह चर्चा करके उसे अपनाया जाए।
1: एक और मुद्दा है, सीजेपी ने ये कहा है कि लगातार एक्शन हो रहा है। सर, सीजेपी ये कह रही है कि जो एक्शन हो रहा है, पुलिस ने और सरकार ने वादा किया था कुछ एक्शन नहीं होगा, लेकिन एक्शन हो रहा है 5 बजे।
0: मुझे उम्मीद है कि वादे निभाए जाएंगे। जो शांतिपूर्ण जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन पर कोई एक्शन नहीं होगा। अगर शरारती तत्व हो, जो साफ शरारत के लिए कर रहे हो, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि कहीं भी कुछ ना हो और कुछ भी हो। मगर ये बहुत साफ करना चाहूँगा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन हमारा संवैधानिक अधिकार है, उसको आदर किया जाए। बाकी न्याय अपना काम करे।
1: 20 जुलाई को जो हुआ सर, विपक्ष ये कह रहा
2: है, गृहमंत्री को जवाब देना चाहिए जो गोली चलाई गई है,
1: पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, विपक्ष भी ये कह रहा है सर।
0: जहाँ भी कुछ भी होता है लोकतंत्र में, हर एक नेता हर एक मंत्री जवाब दे तो होते ही हैं, और जवाब हो तो क्यों ना दें, ये होनी चाहिए। मैं ये कहूँगा जहाँ भी जनता सवाल करे उसका जवाब हो, जवाबदेही की जगह हो, और वो सांसद और विधानसभाएं हैं।
1: सर,
0: मैं ज्यादा गांधी जी के इस पवित्र स्थल पर ज्यादा विवादों में नहीं फंसना चाहूंगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: पीएम से माफी की मांग कांग्रेस पार्टी कर रही है सर,
3: बहुत उत्साहित है, सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कई लोग।
0: अच्छा कुछ देश में हुआ तो उसको खुशी मनाए, मगर विजय में भी विनम्रता हो, ऐसे ना करें कि किसी के दिल को दुखे। तो इसलिए मैं यही चाहूंगा कि बड़े दिल के साथ और प्यार और मोहब्बत के साथ आगे बढ़े। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद जो आप ये संदेश आगे ले जा रहे हैं। बहुत बहुत
4: That was Sonam Wangchuk, who has in a sense become the face of the protest that took place at Jantar Mantar. He sat on a 26-day hunger strike supporting the demands of the CJP, in which they were demanding that that the education minister step down and reforms in the paper in the exam process in India. So he ended his 26-day hunger strike in a hospital. He was in Medanta. Remember, he'd been picked up by the police on the 19th of July and taken to AIIMS. That in itself was a huge controversy. But finally, he's been discharged today. And the first thing he did was come to Rajghat, where he paid a homage to Mahatma Gandhi, whose ideals he's really been following, with the hunger strike being used as a way of making your demands against the government. He used that in Ladakh and then at Jantar Mantar as well. And he was speaking to the media about about Mahatma Gandhi and this inspiration, about the method that Mahatma Gandhi used to protest against the British and how he has been using the same methods against the government. Well, let's go across to Tanushka now, who joins us for more. And Tanushka, as we said, Sonam Wangchuk, the environmentalist and activist from Ladakh, did become the face of the protest at Jantar Mantar. He was picked up by the police. He ended his fast after 26 days, with Minister J.P. Nadda there helping him end the fast. But yes, take us through what he said to the media there after paying homage to Mahatma Gandhi.
5: Right, so I'm also currently present right at Rajghat, wherein Sonam Wangchuk came to pay his respects to Mahatma Gandhi. He had said that before he had sat on his hunger strike, he'd come here to, get the blessings of Mahatma Gandhi as well, because the entire crux of his protest was on Gandhian principles. And speaking to the media right now, what is important to be noted is Sonam Wangchuk has said that this was not just, stopgap movement. This does not stop here. It's also about larger education policies and reforms. And he is hopeful that the parliament, the discussions will be taken up with respect to

0: and they were dead in the palace.
1: How is it going again to make
0: Arabs
1: and well known?
0: Amit Shah is in his pocket.
2: हद हो गई है ये. इन्होंने अभी भी एफआईआर दर्ज की है स्टूडेंट्स के खिलाफ, शायद कल रात को या आज सुबह बिहार में, बंगाल में. तो ये अपनी आदतों से बाज तो आए नहीं हैं. और मैंने सुना है, वेरीफाइड नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि जो लड़कियां गई थी प्रोटेस्ट में, कई लड़कियों के पेरेंट्स को फ़ोन आ रहे हैं, उनको धमकाया जा रहा है कि तुमने अपनी लड़कियों को भेजा. क्या मतलब है? क्या हमारे देश में लड़की प्रोटेस्ट नहीं कर सकती? क्या मतलब है?
3: देश के किसी भी राज्य में, यहाँ तक दिल्ली में भी जो है AK-47 गोलियाँ नहीं चलाई गई हैं, तो बिहार राज्य में किसके आदेश से AK-47 जो है गोलियाँ जो है चलाई गई हैं? और गोलियों का अगर आप वो फुटेज अगर आप देखें तो कोई हवाई फायरिंग नहीं की गई है, निशाना लगा करके फायरिंग किया गया है. और 3 छात्र जो हैं उनको गोलियाँ लगी हैं. जो मुख्यमंत्री हैं, क्या उनका आदेश था? ये तो मुख्यमंत्री जो सम्राट चौधरी जो हैं, खुद ही आपराधिक छवि के हैं, जो पुलिस को भी जो है गुंडा बनाने का काम कर रहे हैं, तो इनको आकर के स्पष्ट करना चाहिए, बयान देना चाहिए कि किसके आदेश से ये हुआ. और हम तो इसकी न्यायिक जांच की मांग करते हैं.
4: भारतीय जनता पार्टी के शासन में हम देख ही रहे हैं कि कैसे युवाओं पर भी अत्याचार नहीं रुक रहा है. और जहां पैलेट्स जलाई गई बच्चों में दिल्ली में, और आप जैसे बता रहे हैं कि बिहार में AK-47 का प्रयोग है, तो ये बहुत ही निंदनीय घटना है. और एक लोकतंत्र में रहते हुए भी कहीं ना कहीं लोगों की जो स्वतंत्रता है, जो फ्रीडम है और जो स्पिरिट है, उसको मारा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में.
5: बहुत ही दुखद विषय है. कुछ समय पहले LOP आदरणीय राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार का ट्वीट किया है, जिस प्रकार का वक्तव्य दिया है, यह कहा है कि पुलिस ने छात्रों पर AK-47 से फायरिंग की है, मुझे लगता है ये न केवल इर्रेस्पॉन्सिबल अपितु एक तरह से ये पाप है. देश में इस प्रकार से हिंसा भड़काने की कोशिश, अराजकता भड़काने की कोशिश LOP राहुल गांधी कर रहे हैं, यह अपने आप में घोर अन्याय है.
6: ये जो इनका मूवमेंट था, ये वायलेंस की ओर जा रहा था, हिंसा की ओर जा रहा. फिर यहाँ PM के हाउस पर आज तक कभी प्रदर्शन नहीं हुआ था, उसी DM के घर पर पत्थरबाजी हो, कहीं नहीं ऐसा हुआ था. तो जब इस प्रकार की बातें आएगी, कानून अपना हाथ में लोग लेगा, तो जो कानून का रखवाला है उसको कुछ न कुछ तो कार्रवाई करनी पड़ेगी. अब वो तो इंक्वायरी का विषय है कि पायलट से हुआ है या नहीं हुआ है. बहुत तरह के मीडिया में बात आती है, लेकिन कहने का मतलब है कि वहाँ सरकार सशक्त रूप में हमारे सम्राट चौधरी जी कर रहे हैं, विकास का काम कर रहे हैं, विद्यार्थियों के लिए कर रहे हैं. अब विद्यार्थी बहकावा में आकर के कुछ गलत काम करते हैं तो स्वाभाविक है थोड़ा सा कड़ा एक्शन तो लेना पड़ेगा, लेकिन क्या एक्शन हुआ है जो आप कह रहे हैं उसकी जानकारी हमको नहीं है.
7: AK-47 इज यूजिंग अगेंस्ट द स्टूडेंट्स इन बिहार, पैलेट इज यूजिंग अगेंस्ट द स्टूडेंट्स इन दिल्ली. दिस इज द गवर्नमेंट सिटिंग देयर, ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट गवर्नमेंट. Who care him, brother?
8: And what about your demand? You will stick to your demand?
7: Our demand is very clear. Where the Home Minister? Where is he hiding? This has to be answered. He has to come and to the Lok Sabha and he has to explain who ordered for this AK-47 in Bihar. Who ordered pellets in this in Delhi? He has to answer. Why he is not answering?
9: Now, a viral video of the CJP spokespersons and supporters dancing and partying after the resignation of Dharmendra Pradhan has triggered a controversy. Both the BJP as well as some members of the Congress have hit out at the CJP. BJP says that the youth of the country deserve sincerity, not a spectacle. Former MP Mahesh Jethmalani questioned the timing of the celebrations, asking why a victory party was held after days of unrest. But hitting back, the CJP spokesperson Saurav Das, you can see in those visuals there, he said that this is how this generation is, that it's not understood by the political parties, even by the media. He says this generation is confident, creative and resilient. He went on to say that uncles and aunties can keep complaining.
10: 21 young students have lost their life, but instead of having solidarity, people are seeing partying. There's no problem in partying, dancing, celebrating ideally. But when the movement or when the agitation is for the 21 young students' lives that have been lost and the protest has ended, then the common solidarity would say that one should be solemn, sober, and should not be partying. Because if somebody eats a burger, Vajeta ate a burger, he was sacked. Now you are showing deep insensitivity by partying. Rather, you should have gone to the states like Karnataka, Jammu Kashmir, Himachal, Punjab, and demanded the resignation of education ministers there.
11: देखिए अभी भी बिहार में पटना में 1000 से अधिक छात्रों को डिटेन करके रखा हुआ है, उन पे केस किए हैं, इवन विपक्षी नेताओं को, हमारे जो माननीय विधायक थे उन लोगों को भी रखा. तो इनके समझौते के अनुसार इनको किसी पे केस नहीं करना था और जो जिन लोगों को गिरफ्तार किए थे उनका छोड़ना था. लेकिन बिहार में ये उल्टा करिए सरकार, पाकिस्तान का एजेंट, चाइना का एजेंट, अगर थे सीजेपी के लोग तो आपके मंत्री काहे नंगे पैर जाके उनसे बात कर रहे थे? पहले उनसे पूछो ना, क्यों जा रहे थे वो? जेठमलानी जी से पूछिए क्यों नड्डा जी और जितेंद्र जी भाग भाग के नंगे पैर घूम के उनसे बात करने के लिए जा रहे थे. अगर वो एजेंट थे, अगर उनके लॉजिस्टिक सपोर्ट विदेश से फंड हो रही थी तो वो क्यों जा रहे थे? उनको अरेस्ट करा देते वहीं.
12: महेश जेठमलानी जी को कहिए, सलाह दे रहे हैं हम उनको, शांत रहें, उनका मुंह बंद रखें, उनमें उन्हीं का लाभ है और उनकी पार्टी का भी लाभ है. सही वक्त पे बोलना अच्छा रहता है, गलत वक्त पे मुंह खोलने में बहुत नुकसान होता है, उन्हें समझ लेना चाहिए.
9: All right, so is it a generational divide there? Well, with that, we'll slip into a short break. More coming up on the other side. Stay with us.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा,
5: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
4: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
6: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
7: P-Mark, the mustard specialist since 1933. Barso se sarso.
8: Kuch to baat hai is dil mein.
9: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
10: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Aisha Sehgal, and Sandy Howard.
9: The show that sets the prime time agenda.
10: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
9: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
11: ए युग तुम्हारा, ए रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान।
12: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद। अभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़े वंदे भारतम .org पर रजिस्टर करें।
13: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
14: स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ऑफ द न्यूज़ रूम टू द कोर ऑफ द स्टोरीज शेपिंग योर वर्ल्ड। जॉइन मी गार्गी राउत एज आई ट्रैक ऑल द डेवलपमेंट्स एज दे ब्रेक। लाइव फ्रॉम द एनडीटीवी न्यूज़ रूम, वीकडेज एट 4 PM।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा,
4: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
5: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस तेल में।
7: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
8: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Aisha Sehgal.
7: The show that sets the prime time agenda.
8: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
7: Join me, Aisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
9: ए युग तुम्हारा, ए रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान।
10: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद। तभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़े vandebharatam.org पर रजिस्टर करें।
11: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज।
12: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा,
3: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
1: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
7: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
8: Hello and welcome to Watch and Prime 5 with me, Harisha Sehgal.
7: The show that sets the prime time agenda.
8: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
7: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.

0: 7।
1: ये युग तुम्हारा, ये रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान।
2: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद। तभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़े vandebharatam.org पर रजिस्टर करें।
3: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
4: स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ऑफ द न्यूज रूम टू द कोर ऑफ द स्टोरीज शेपिंग योर वर्ल्ड। जॉइन मी गार्गी रावत एज आई ट्रैक ऑल द डेवलपमेंट्स एज दे ब्रेक। लाइव फ्रॉम द एनडीटीवी न्यूज रूम, वीकडेज एट 4 PM।

0: अर्ज की है स्टूडेंट्स के खिलाफ, शायद कल रात को या आज सुबह बिहार में, बंगाल में, तो ये अपनी आदतों से बाज तो आए नहीं हैं। और मैंने सुना है, वेरीफाइड नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि जो लड़कियां गई थी प्रोटेस्ट में, कई लड़कियों के पेरेंट्स को फ़ोन आ रहे हैं, उनको धमकाया जा रहा है कि तुमने अपनी लड़कियों को भेजा। क्या मतलब है, क्या हमारे देश में लड़की प्रोटेस्ट नहीं कर सकती? क्या मतलब है?
1: देश के किसी भी राज्य में, यहाँ तक दिल्ली में भी जो है AK-47 गोलियाँ नहीं चलाई गई हैं, तो बिहार राज्य में किसके आदेश से AK-47 जो है गोलियाँ जो है चलाई गई हैं? और गोलियों का अगर आप वो फुटेज अगर आप देखें तो कोई हवाई फायरिंग नहीं की गई है, निशाना लगा करके फायरिंग किया गया है। और 3 छात्र जो हैं उनको गोलियाँ लगी हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, क्या उनका आदेश था? ये तो मुख्यमंत्री जो सम्राट चौधरी जो हैं, खुद ही आपराधिक छवि के हैं, जो पुलिस को भी जो है गुंडा बनाने का काम कर रहे हैं, तो इनको आकर के स्पष्ट करना चाहिए, बयान देना चाहिए कि किसके आदेश से ये हुआ। और हम तो इसकी न्यायिक जांच की मांग करते हैं।
2: भारतीय जनता पार्टी के शासन में हम देख ही रहे हैं कि कैसे युवाओं पर भी अत्याचार नहीं रुक रहा है। और जहां पैलेट्स जलाई गई बच्चों में दिल्ली में, और आप जैसे बता रहे हैं कि बिहार में AK-47 का प्रयोग है, तो ये बहुत ही निंदनीय घटना है। और एक लोकतंत्र में रहते हुए भी कहीं ना कहीं लोगों की जो स्वतंत्रता है, जो फ्रीडम है और जो स्पिरिट है, उसको मारा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में।
3: बहुत ही दुखद विषय है। कुछ समय पहले LOP आदरणीय राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार का ट्वीट किया है, जिस प्रकार का वक्तव्य दिया है, यह कहा है कि पुलिस ने छात्रों पर AK-47 से फायरिंग की है, मुझे लगता है ये न केवल इर्रेस्पॉन्सिबल अपितु एक तरह से ये पाप है। देश में इस प्रकार से हिंसा भड़काने की कोशिश, अराजकता भड़काने की कोशिश LOP राहुल गांधी कर रहे हैं, यह अपने आप में घोर अन्याय है।
4: ये जो इनका मूवमेंट था, ये वायलेंस की ओर जा रहा था, हिंसा की ओर जा रहा, फिर यहाँ PM के हाउस पर आज तक कभी प्रदर्शन नहीं हुआ था, उसी DM के घर पर पत्थरबाजी हो, कहीं नहीं ऐसा हुआ था। तो जब इस प्रकार की बातें आएगी, कानून अपना हाथ में लोग लेगा, तो जो कानून का रखवाला है उसको कुछ न कुछ तो कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब वो तो इंक्वायरी का विषय है कि पायलट से हुआ है या नहीं हुआ है, बहुत तरह के मीडिया में बात आती है, लेकिन कहने का मतलब है कि वहाँ सरकार सशक्त रूप में हमारे सम्राट चौधरी जी कर रहे हैं, विकास का काम कर रहे हैं, विद्यार्थियों के लिए कर रहे हैं। अब विद्यार्थी बहकावा में आकर के कुछ गलत काम करते हैं तो स्वाभाविक है थोड़ा सा कड़ा एक्शन तो लेना पड़ेगा, लेकिन क्या एक्शन हुआ है जो आप कह रहे हैं उसकी जानकारी हमको नहीं है।
5: AK-47 इज यूजिंग अगेंस्ट द स्टूडेंट्स इन बिहार, पैलेट इज यूजिंग अगेंस्ट द स्टूडेंट्स इन दिल्ली। दिस इज द गवर्नमेंट सिटिंग देयर, ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट गवर्नमेंट, वो केयर हिम ब्रदर।
6: एंड व्हाट अबाउट योर डिमांड, यू विल स्टिक टू योर डिमांड?
5: आवर डिमांड इज वेरी क्लियर, वेयर द होम मिनिस्टर, वेयर इज ही हाइडिंग? दिस हैज टू बी आंसर्ड, ही हैज टू कम एंड टू द लोकसभा एंड ही हैज टू एक्सप्लेन हु ऑर्डर्ड फॉर दिस AK-47 इन बिहार, हु ऑर्डर्ड पैलेट्स इन दिस इन दिल्ली। ही हैज टू आंसर, व्हाई ही इज नॉट आंसरिंग?
7: बिहार AK-47 इज बीइंग यूज्ड, police in Delhi and UP are going to the houses of the students who have been protesting there. They are going to the houses and they are arresting the parents of the people, those who have supplied food and water and soft drinks to the people, to the students, those who are agitating there. See, what is this happening? I think the part of the deal, the part of the compromise was, not actually the compromise, but the part of the discussion that took place between the ministers of the union government and the protesters was that they will withdraw all the cases against the students. Now fresh cases are being, fresh FIRs are being filed against the students. They are going to their houses, they are picking up their parents, they are picking up their relatives, brothers and sisters. What is this happening?
8: नहीं देखिए, स्टूडेंट्स को लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि आप अपनी बात को अच्छे से मजबूती से रख सकते हैं। पीसफुल प्रोटेस्ट हर जगह स्वागत योग्य है और लोकतंत्र में जो हमारे युवा है उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए भी युवाओं को पूरा अधिकार है अपनी बातों को रखने का। जहां पे AK-47 यूज हुआ है वो गलत है, उसके हम लोग खिलाफ है। और स्टूडेंट्स पे जिस तरीके से जगह जगह पे लाठी चार्ज की गई है वो भी गलत है। पर ये बात सोनम वांगचुक जी जो CJP के संस्थापक हैं वो भी, और CJP की जो प्रवक्ता है वो भी ये बात को खुलेआम ये एक्सेप्ट किए हैं कि कई बार स्टूडेंट प्रोटेस्ट में एंटी सोशल एलिमेंट्स उपस्थित थे, तो वहां पे पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन किया गया।
9: पहली बात तो दिल्ली पुलिस ने जो बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज किया, लाठियों में कीले भी थी, पैलेट गन का प्रयोग हुआ, बिहार के अंदर AK-47 का प्रयोग हुआ छात्रों के ऊपर, ये कौन आदेश दे रहा है? और उसके बाद राह चलते भाजपा के नेता स्टूडेंट्स को बुला बुला के कैसे गालियां दे रहे हैं, ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं, ये वातावरण ऐसा किसने बनाया? गृह मंत्री जी को जवाब देना पड़ेगा।
10: An important observation in the Supreme Court as well over the violence used against students by police during the protest, saying that the right to protest is a fundamental right and it is something that is protected under the Constitution. The Chief Justice of India, the Chief Justice Surya Kant, has stated authorities cannot resort to lathi charge merely because there is an agitation. He emphasized that the right to peaceful and lawful protest is guaranteed under the Constitution and that peaceful demonstrations cannot be met with force without valid justification. The Chief Justice also said agitation alone cannot be the basis for police action, and he stressed that peaceful dissent must be respected. His remarks came while hearing pleas concerning allegations of excessive use of force against protesting students, while hinting that the top court will consider bringing in pan-India guidelines on how police and security forces must deal with protests. The top court also, however, raised the issue of adequate safety gear for the police personnel. Now, another smaller controversy that's erupted today, this after a video went viral of the Cockroach Janata Party spokespersons and supporters dancing and partying after the resignation of Dharmendra Pradhan. And this has now triggered a controversy with lots of comments. Both the BJP and the Congress have hit out at the CJP. BJP says that the youth of the country deserve sincerity, not a spectacle. Former MP Mahesh Jethmalani has questioned the timing of the celebrations, asking why a victory party held after days of unrest. Hitting back, however, the Cockroach Janata Party spokesperson Saurav Das, who can be seen in those visuals dancing, he said that critics were failing to understand how the younger generation approaches activism. In a post on X, Das said that most simply do not understand the language of Gen Z and younger generations, that this is how Gen Z is, this is how the generation is, confident, creative and resilient. He went on to say that uncles and aunties can keep complaining. All right, some breaking news now coming in, and an IndiGo flight from Dubai to Mumbai has been diverted to Rajkot and it's made an emergency landing. According to sources, smoke was detected in the cargo hold area of the flight. There you can see visuals after the flight landed in Rajkot, landing safely. We might add, a full emergency was declared at the international airport. 194 passengers were on board and all passengers safely disembarked the flight. So an emergency landing by this Mumbai to Dubai flight, which was diverted to Rajkot, the Dubai to Mumbai IndiGo flight diverted to Rajkot, making an emergency landing. So there you can see an emergency there at the airport. However, all the passengers disembarked safely. With that, we'll slip into a short break. More news and updates coming up on the other side. Do stay with us.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
5: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस तेल में।
7: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
8: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Aisha Sehgal, on Saturday.
7: The show that sets the prime time agenda.
8: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
7: Join me, Aisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
9: ए युग तुम्हारा, ए रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान।
10: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद। तभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़े vandebharatam.org पर रजिस्टर करें।
11: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
12: स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ऑफ द न्यूज रूम टू द कोर ऑफ द स्टोरीज शेपिंग योर वर्ल्ड। जॉइन मी गार्गी रावत एज आई ट्रैक ऑल द डेवलपमेंट्स एज दे ब्रेक लाइव फ्रॉम द एनडीटीवी न्यूज रूम, वीकडेज एट 4 PM।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
7: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
8: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Aisha Sehgal, and Sandy Howard.
7: The show that sets the prime time agenda.
8: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
7: Join me, Aisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
9: ए युग तुम्हारा, ए रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान।
10: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद। तभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़े वंदे भारतम .org पर रजिस्टर करें।
11: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
12: स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ऑफ द न्यूज रूम टू द कोर ऑफ द स्टोरीज शेपिंग योर वर्ल्ड। जॉइन मी गार्गी राउत एज आई ट्रैक ऑल द डेवलपमेंट्स एज दे ब्रेक। लाइव फ्रॉम द एनडीटीवी न्यूज रूम, वीकडेज एट 4 PM।

0: And well, we have some breaking news for you. Lok Sabha and Rajya Sabha is now all set to resume shortly. Lok Sabha at 5 p.m. and Rajya Sabha at 5:15 p.m. The question, of course, is will the anti-paper league bill be passed in Parliament? This at a time when the opposition is adamant on the House to discuss the use of excessive police force. They had guns on the July 20th march. But on the side, the centre, the government wants a decision on the anti-paper leak bill, both in Lok Sabha and Rajya Sabha. I'm going to go across to my colleague Himanshu, who's been tracking this story very closely. Himanshu, the billion-dollar question is, will the deadlock break or not? Will there be a discussion on the anti-paper leak bill or not in Lok Sabha?
1: Well, Rahesha, for now, the stalemate, the deadlock in Parliament in both the houses continues. But we have an important update. Sources have indicated that the big discussion on the new anti-paper leak bill is expected to start tomorrow. The bill was introduced today at 12 amidst din in Lok Sabha, and after that several efforts have been made to initiate a big debate on the public examination reform system, of course Lok Sabha Speaker and the government have not succeeded so far. At 2 o'clock Speaker had given 3 hours to both government and the opposition leaders to sit together and try and resolve this deadlock. But as we speak, the deadlock continues. But at the same time, we are getting information from sources that the debate is now expected to resume tomorrow when Parliament assembles again at 11 a.m. And of course, the bill will be put to vote after a lengthy discussion. Remember, Lok Sabha Speaker has very categorically said that he is willing to give more than 6 hours to discuss this bill. If there are MPs who want to participate, they will all be given an opportunity to share their views. We do also know that several opposition MPs have also submitted notices.
0: I just need to inform the viewers as well. The discussion on the anti-paper leak bill, the voting on that will now take place tomorrow and not today. Earlier, the Lok Sabha Speaker also said that we will allot at least 6 hours for discussion on the anti-paper leak bill. But now, the discussion on this very important anti-paper leak bill has now been postponed till tomorrow. The voting on the bill will happen tomorrow. Let's just cut across what's happening in the Lok Sabha right now. Himanshu, will come back to you.
2: Please. No. Please sit down. We have a very important business. No. In the morning sessions, Honorable Speaker has mentioned about the bill or the need bill. We are going to discuss a very important matter now. Please sit down. Let us start the business. Let us start the discussion. This is a very, very important bill. No. You all know we are all waiting for this bill. Are you not waiting for this bill? We are waiting for this bill. Let us have a discussion on this bill. Everybody will have an opportunity to speak on the bill. You please give your opinion. Please give your views. Please sit down. Please put down your placards. Kindly put down your placards. Let us start the discussion. I am requesting you. Please go back to your seat. Hanuman Beniwal ji, aap apne jagah pe jaiye, please. Honorable Minister Shri Kiran Rijiju ji.
3: Sir, sare members taiyari ke sath aaye hain. Aur opposition ke bhi kai members ne amendment diye hain. Wo bhi taiyari karke aaye hain. बहुत ही महत्वपूर्ण बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, छात्रों का जिंदगी के लिए ये महत्वपूर्ण बिल है. सब बोलने वाले वक्ता भी तैयार है, फिर भी जानबूझ करके कांग्रेस पार्टी और उसके कुछ साथी जानबूझ करके आज इतना महत्वपूर्ण बिल पे चर्चा होने नहीं दे रहे. मैं बहुत दुखी मन के साथ कह रहा हूँ. पहले दिन तो वो कह रहे थे कि चर्चा करना चाहिए, एग्जाम का मामला है, बच्चों का मामला है. अब जब चर्चा करने के लिए इतना महत्वपूर्ण बिल लेकर के जब आया है, टाइम भी दे चुके हैं, 6 घंटे स्पीकर साहब ने, और टाइम देंगे, आप चाहते तो और टाइम देंगे, फिर भी ये कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं लग रहे हैं. मैं कांग्रेस के साथियों को कहना चाहता हूँ, ऐसा काम मत कीजिए. ये आपका जो इमेज है बहुत गिर चुका है और बहुत बदनाम होने वाला काम मत कीजिए. पूरा पार्टी एकजुट होकर के हमारे युवाओं का, छात्रों का जिंदगी को ठीक करने के लिए महत्वपूर्ण बिल पे सब हिस्सा लेना चाहिए. मैं फिर से अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से.
2: थैंक यू सर. बहुत दिन से हम वेट कर रहे हैं इस बिल के लिए। ये युवाओं के भविष्य के लिए है, हमारे देश के युवा के भविष्य के लिए है। आपने भी पूछा चर्चा के लिए, आपने भी पूछा है जब सरकार तैयार होकर आए हैं चर्चा करने के लिए। बिल आपको एडवांस में सर्कुलेट भी हुआ, बिल का कॉपी एडवांस में आपको सर्कुलेट भी हुआ। हम जानते हैं आप में से कई लोग कहीं से कई हॉनरेबल मेंबर्स प्रिपेयर करके आए हैं, डिस्कस करने के लिए प्रिपेयर करने आए हैं। आप नहीं चाहते हैं, आप इस सब्जेक्ट में चर्चा नहीं चाहते हैं, आप चर्चा नहीं चाहते, चर्चा करना नहीं चाहते हैं। आप इस देश के युवा के भविष्य के लिए चर्चा नहीं करना चाहते हैं, आप नीट के ऊपर चर्चा नहीं करना चाहते हैं, आप इसी तरह हल्ला करना चाहते हैं। हमारे देश के युवाओं के बारे में आप सोचना नहीं चाहते हैं, उनके बारे में चर्चा नहीं करना चाहते हैं। यदि आपको आज चर्चा नहीं करना चाहते हैं, आज

0: from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
1: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
2: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Aisha Sehgal.
1: The show that sets the prime time agenda.
3: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
1: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
4: ए युग तुम्हारा, ए रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान।
5: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद। तभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़ें। वंदे भारतम.org पर रजिस्टर करें।

0: Dorsey, managing editor and primetime anchor.
1: The news has influence. The buck stops here with Padmaja Joshi.
2: Your work is being watched by people. You think that you're making an impact in this time. I think that's really a huge validation, very rewarding. And I'm pretty certain that Team Any TV will go from strength to strength.
1: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones.
3: This location from Tel Aviv
1: brought clarity right now, right to complex right issues of national security and international affairs.
4: Prime Minister.
5: Just take a listen to the press conference of the CJP going on right now. It's Saurav Das, the spokesperson there speaking and addressing the media.
6: साथ खड़े हैं तो जो भी अभी छात्र ऐसे टारगेट हो रहे हैं देश भर में प्लीज होल्ड ऑन वी आर विद यू हम लोग पूरा लॉयर्स के साथ टच में है कोऑर्डिनेशन में है एंड एंड तक इस चीज को हम लोग पहुंचाएंगे अभी मैं आपको एक और चीज बोलना चाहता हूं हम लोगों ने मंच से जब पुलिस ब्रुटैलिटी हुआ था 20 तारीख को हम लोगों ने एक प्रण लिया था कि ऐसे जो पुलिस वाले हैं और ऐसे जो आरएएफ वाले हैं जिन्होंने सीधा सीधा इस इंटेंशन से वहाँ पे उस दिन आए थे कि हम बच्चों का सर फोड़ेंगे हाथ तोड़ेंगे पैर तोड़ेंगे छोटी बच्चियों का मोलेस्टेशन करेंगे लड़कियों का मोलेस्टेशन करेंगे ऐसे सारे पुलिस वालों के खिलाफ हम लोग कंप्लेन फाइल करेंगे हम लोग एफआईआर दर्ज करवाएंगे अगर लगे तो हम लोग कोर्ट भी जाएंगे एंड जब टाइम आएगा उनका जवाबदेही भी फिक्स करेंगे तो वो प्रण लिया था एंड हम लोग उसी राह पे आगे बढ़ रहे हैं इसलिए हम लोगों ने हमारे वेबसाइट पे cockroachjantaparty.org/sakshi साक्षी नाम का प्लेटफॉर्म हम लोगों ने लॉन्च किया है इस पे लोग जा सकते हैं जिनके पास भी पिक्चर्स है और वीडियोस है उनके साथ हो रहे ब्रुटैलिटी का उस दिन के रिलेटेड या उसके बाद भी अगर ऐसे वीडियोस और पिक्चर्स है जो एविडेंस के रूप में काम कर सकते हैं वो यहाँ जाए और यहाँ जाके अपलोड करे अपना स्टोरी लिखे हमारा जो टीम है वो टीम उसको छाटेगा एंड आपसे इन फ्यूचर टच में रहेगा एंड इसको लीगल प्रोसेस के थ्रू आगे बढ़ाएगा तो ये फर्स्ट स्टेप है अकाउंटेबिलिटी तय करने का पुलिस वालों का तो फिर से रिपीट कर देता हूँ cockroachjantaparty.org/sakshi SAKSHI इस ये हम लोग बहुत मतलब कुछ टाइम में ही हम लोग अपने सारे ऑफिशियल हैंडल्स में डाल देंगे एंड सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास ऐसे वीडियोस और पिक्चर्स है तो यहाँ पे जाइए उस पर क्लियर ट्यूटोरियल दे रखा है कि कैसे यूज़ करना है उसको यूज़ करके आप इस प्रयास में आप सहयोग दीजिए अब आशुतोष एक अपील करेंगे
7: 25 जुलाई को जब जेपी नड्डा जी और जितेंद्र सिंह जी से हमारी थर्ड राउंड की बातचीत हुई थी तो उसमें इस बात पर सहमति बनी थी कि जितनी भी एफआईआर्स प्रोटेस्टर्स और ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ फाइल की गई है हमारे जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन को लेकर 20 जुलाई के प्रदर्शन को लेकर और देश भर में चल रहे प्रदर्शनों को लेकर वो सभी एफआईआर्स विड्रॉ की जाएंगी और इस बात पे भी अलाइनमेंट हुआ था कि कोई भी नई एफआईआर फ्यूचर में किसी भी प्रोटेस्टर या ऑर्गेनाइजर के खिलाफ फाइल नहीं की जाएगी इस एग्रीमेंट का एक रिटर्न ड्राफ्ट भी हमने जेपी नड्डा जी को और जितेंद्र सिंह जी को सबमिट किया था और इस बात पर सहमति बनी थी कि कल मंगलवार तक सरकार की तरफ से रिटर्न एग्रीमेंट की कॉपी हमसे शेयर कर दी जाएगी और दोनों साइड के लॉयर्स अलाइन करने के बाद दैट रिटर्न एग्रीमेंट विल बी फाइनलाइज्ड हम सरकार का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो रिटर्न एग्रीमेंट की कॉपी हमें जल्द से जल्द शेयर करें आप जेपी नड्डा जी की
5: In other news, a viral video of CJP spokesperson dancing and partying after the resignation of Dharmendra Pradhan has now triggered a controversy. Both the BJP and the Congress have now hit out at the Cockroach Janata Party. BJP says that the youth of the country deserves sincerity, not a spectacle. Former MP Mahesh Jethmalani has questioned the timing of the celebrations, asking why a victory party was held after days of unrest. Hitting back, CJP spokesperson Saurav Das said the critics were failing to understand how younger generations approach activism. In a post on X, Das said that most simply do not understand the language of Gen Z and younger generations. This is how this generation is confident, creative and resilient. He went on to say that uncles and aunties can keep complaining.
4: 21 young students have lost their life, but instead of having solidarity, people are seen partying. There's no problem in partying, dancing, celebrating ideally. But when the movement or when the agitation is for the 21 young students' lives that have been lost and the protest has ended, then the common solidarity would say that one should be solemn, sober, and should not be partying. Because if somebody eats a burger, Vajeta ate a burger, he was sacked. Now you are showing deep insensitivity by partying. Rather, you should have gone to the states like Karnataka, Jammu Kashmir, Himachal, Punjab, and demanded the resignation of education ministers there.
8: देखिए अभी भी बिहार में पटना में 1000 से अधिक छात्रों को डिटेन करके रखा हुआ है, उन पे केस किए हैं, एवं विपक्षी नेताओं को, हमारे जो माननीय विधायक थे उन लोगों को भी रखा. तो इनके समझौते के अनुसार इनको किसी पे केस नहीं करना था और जो जिन लोगों को गिरफ्तार किए थे उनका छोड़ना था. लेकिन बिहार में ये उल्टा करिए सरकार. पाकिस्तान का एजेंट, चाइना का एजेंट अगर थे सीजेपी के लोग, तो आपके मंत्री काहे नंगे पैर जाके उनसे बात कर रहे थे? पहले उनसे पूछो ना, क्यों जा रहे थे वो? जेठमलानी जी से पूछिए क्यों नड्डा जी और जितेंद्र जी भाग भाग के नंगे पैर घूम के उनसे बात करने के लिए जा रहे थे. अगर वो एजेंट थे, अगर उनके लॉजिस्टिक सपोर्ट विदेश से फंड हो रही थी, तो वो क्यों जा रहे थे? उनको अरेस्ट करा देते वहीं.
5: On that, we'll be slipping into a very short break. I'm right back. News and updates continues here on NDTV 24/7.

0: right from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rao, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
1: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
2: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Aisha Sehgal. What's that to me? How?
1: The show that sets the prime time agenda.
2: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
1: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
3: ए युग तुम्हारा, ए रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान।
4: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद। तभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़ें। वंदे भारतम.org पर रजिस्टर करें।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा,
4: सबका राजा आकर मसाला।
5: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
7: माँ भी हमेशा पीमाक मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
8: पीमाक द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
9: सरसों से सरसों।
10: वी आर ओवर जिमी।
11: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
12: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.
13: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
14: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
15: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
8: पीमार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
16: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्म इसलिए स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
17: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100।
18: दिस इजंट जस्ट अबाउट कार्स एंड बाइक्स, दिस इज अबाउट हाउ यू मूव।
19: दिस कार मेक्स नो सेंस, येट इट मेक्स एवरी सेंस।
20: What we are sitting inside is a Joby powered air taxi.
21: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
16: Our pure Shahi Paneer Masala, delicious, healthy, every day.
22: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं।
23: Just few inches away is POK.
22: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?
24: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
25: Really?
24: Fashion that made you gag, films that made you fangirl, art that made it to the gram, and trends that kept us with the program. Hello and welcome to a brand new show. I am your host Mayank Chaudhary and this is Limelight.
26: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
8: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
27: स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ऑफ द न्यूज रूम टू द कोर ऑफ द स्टोरीज शेपिंग योर वर्ल्ड। Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
28: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories

0: shape your life.
1: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Aisha Sehgal. What's happening? How?
0: The show that sets the prime time agenda.
1: We'll be deep diving into this topic to tell you what's happening.
0: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
2: ए युग तुम्हारा, ए रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम ही हो भारत का स्वाभिमान।
3: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद। तभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रासरूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़ें। वंदे भारतम.org पर रजिस्टर करें।

0: When the battle is for the trust of young India, where do politicians go? To Parliament, to a press conference, or to Instagram? That's exactly the strategy Prime Minister Narendra Modi appears to have adopted in the middle of the nationwide row over examination reforms. As the students continue to demand answers and the political battle intensifies, Prime Minister has launched a series of Instagram videos explaining the government's reform roadmap. The first signal came on the 23rd of July. For the first time since the examination row escalated, Prime Minister Narendra Modi released a video on Instagram addressing the issue of exam reforms. Rather than engaging in the political slugfest, the Prime Minister assured students that government was committed to fixing the process. It was a carefully crafted message, short, direct and designed for a social media audience.
1: मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे. आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया. फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी. कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा. थैंक यू फ्रेंड्स.
0: अ डे लेटर अनदर इंस्टाग्राम वीडियो. दिस टाइम ही थैंक्ड द यूथ फॉर द ओवरवेलमिंग रिस्पांस.
1: थैंक यू फ्रेंड्स. कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया. मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी. ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा.
0: The messaging remained consistent. Focus on reforms, focus on students, and avoid the political noise surrounding the protests. The outreach has now entered the third phase. Prime Minister announced the formation of a high-powered task force on examination reforms to be led by Infosys co-founder Nandan Nilekani. The announcement was once again made through an Instagram video, reinforcing the government's decision to communicate directly with the young audiences on the platform they use the most.
1: जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, वे जेलों में सड़ रहे हैं. हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं. हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा.
0: द टाइमिंग इज सिग्निफिकेंट. For days, the country witnessed protests over the examination system. Students occupied the streets, political parties entered the debate. Against that backdrop, Prime Minister's communication strategy appears focused on speaking directly to young Indians instead of responding through conventional political platforms. Whether this digital outreach changes public perception remains to be seen. The government's examination reform campaign is no longer confined to official statements of Parliament. It is now playing out on the smartphone screens of millions of young Indians. Bureau Report, NDTV.
1: बहुत ही पीड़ादायक है.
2: Well, the Prime Minister is adapting to new technology, but does this cut ties with the generation which, in fact, forced the government through Instagram and to their protests? to in fact get one of the ministers to resign. We'll have to wait and see how this plays out. But at this moment, a quick break. I'm coming back. Stay tuned. Sources inform NDTV the inquiry has found out

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा,
4: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
5: कुछ तो बात है इस दिल में।
6: माँ भी हमेशा अपनी मार्क मास्टर डायल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
5: कुछ तो बात है इस दिल में।
7: B-Mark, the mustard specialist since 1933.
8: सरसो से सरसो।
9: We are over, Jimmy.
10: Hey, life में scratches तो आएंगे। गाड़ी के scratches को तो Cosmo PPF संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
11: जानते हैं, मैं Elite Matrimony क्यों recommend करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, or 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
12: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? Silver के लिए sterling mark, gold के लिए hallmark,
13: और mustard oil के लिए सिर्फ P mark.
14: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
7: B-Mark, the mustard specialist since 1933. Barso se sarso.
5: Kuch to baat hai is dil mein.
15: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, are pure vermicelli. Swadisht, sehatmand, har roz.
16: Launch control, 0 to 100.
17: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
18: This car makes no sense, yet it makes every sense.
19: What we're sitting inside is a Joby-powered air taxi.
20: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
15: Our pure Shahi Paneer Masala, delicious, healthy, every day.
21: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं।
22: Just few inches away is POK.
21: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?
23: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
24: Really?
23: Fashion that made you gag. Films that made you fangirl, art that made it to the gram, and trends that kept us with the program. Let's get it. Hello and welcome to a brand new show. I am your host Mayank Chaudhary and this is Limelight.
25: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है, शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
7: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
5: कुछ तो बात है इस दिल में।
26: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
27: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
28: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Aisha Sehgal.
27: The show that sets the prime time agenda.
28: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
27: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
29: ए युग तुम्हारा, ए रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान।
30: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद। तभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़ें। वंदे भारतम.org पर रजिस्टर करें।

0: front lines of Kargil. The fury of Operation Sindoor.
1: So many attacks.
0: The chaos and cries of disaster zones. To fighter jet cockpits. And the world's most defining interviews.
1: It's incredible.
0: He has seen history break. Live. Unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
1: Welcome to Left, Right and Center.
0: Hard facts.
2: War-struck country.
0: Hard questions.
1: In the Ukraine.
0: 30 years of trust.
3: In the Kargil area.
1: North Ukraine.
2: In France. In Italy.
1: At Srinagar.
2: INSP.
1: Vishnu Shom for NDTV.
0: Vishnu Shom. Only on NDTV.
4: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
5: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
6: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
7: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
8: कुछ तो बात है इस दिल में।
9: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
10: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
11: अरे मेरे राजा।
12: सबका राजा आकर मसाला।
13: We are over, Jimmy.
14: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
15: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमोनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैच मेकिंग सर्विस फॉर द एलीट।
16: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज।
17: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100।
18: दिस इजंट जस्ट अबाउट कार्स एंड bikes, this is about how you move. This car makes no sense, yet it makes every sense.
19: What we are sitting inside is a Joby powered air taxi.
18: Your friend said, ye le le. We said, maybe not. Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
16: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
20: पीओके के फायरिंग रेंज में खड़े हैं।
21: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज पीओके।
20: हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। इज इट फायर?
18: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
20: Really?
18: Fashion that made you gag. Films that made you fangirl. Art that made it to the gram. And trends that kept us with the program.
22: Let's get it.
18: Hello and welcome to a brand new show. I am your host Mayank Chaudhary and this is Limelight.
23: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है, शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
7: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
8: कुछ तो बात है इस तेल में।
9: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
10: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
11: अरे मेरे राजा।
12: सबका राजा आकर मसाला।
13: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom. Weekdays at 4 p.m.
24: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
25: Hello and welcome to watching Prime 5 with me, Raisha Sehgal, Sandy Howard.
24: The show that sets the prime time agenda.
25: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
24: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
26: ए युग तुम्हारा, ए रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम ही हो भारत का स्वाभिमान।
0: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद। तभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़े वंदे भारतम.org पर रजिस्टर करें।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
7: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
8: देश का टायर जेके टायर।
9: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
10: वाओ मामा क्या स्वाद है।
11: अरे मेरे राजा।
12: सबका राजा आकर मसाला।
13: वी आर ओवर जिमी।
14: हे लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
15: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैचमेकिंग सर्विस फॉर द एलीट।
16: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
17: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
2: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933 बरसों से सरसों।
3: कुछ तो बात है इस तेल में।
4: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से।
5: देश का टायर जेके टायर।
6: पीओके के फायरिंग रेंज में खड़े हैं।
7: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज पीओके।
6: हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। इज इट फायर।

0: देश का टायर जेके टायर।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
3: अरे मेरे राजा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में हिंदू।

0: देश का टायर जेके टायर।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा,
3: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.

0: रैना तू सतरंगा,
1: जो होना है वो तो होना ही है, रंगीले तू सदा मुस्कुरा, सदा सदा सदा मुस्कुरा।
0: रंग रंग रंग रंग रंग रंगीने रंग रंगीने रे, देख कैसे भी हो दिन रंग बना रहे।

0: नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्म इसलिए स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: वी आर ओवर जिमी।
2: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा, आप अपना देख लो।

0: arena tu sataranga.
1: Jo hona hai, wo to hona hi hai. Rangile tu sada muskura. Sada, sada, sada muskura. Rang, rang, rang, rang, rang, rangine, rang, rangine, re, de. Kaise bhi ho din, rang bana rahe.
2: Bojo paints, rang bana rahe.
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
4: वाह मामा, क्या स्वाद है।
5: अरे मेरे राजा,
6: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.
7: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
8: We are over, Jimmy.
6: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
9: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
10: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
11: कुछ तो बात है इस तेल में।

0: Renatu Sataranga.
1: Jo hona hai, wo to hona hi hai. Rangile tu sada muskura. Sada, sada, sada muskura.
0: Rang, rang, rang, rang, rang, rangine, rang, rangine, re, de. Kaise bhi ho din, rang bana rahe.
2: Bojo paints, rang bana rahe.
3: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
4: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
5: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
6: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
7: कुछ तो बात है इस दिल में।
8: हिंदू

0: देश का टायर, जेके टायर।
1: Where the software engineer with a big idea meets the smart market analyst, meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा,
4: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
5: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज।
6: We are over, Jimmy.
4: Hey, life में scratches तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
7: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
8: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
9: कुछ तो बात है इस तेल में।
5: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस।

0: देश का टायर, जेके टायर।
1: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
2: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी, आर प्योर वर्म इसलिए स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज।
3: We are over, Jimmy.
4: Hey, life में scratches तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा, आप अपना देख लो।

0: ये युग तुम्हारा, ये रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान।
1: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद। तभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़े। वंदे भारतम.com

0: वी आर ओवर जिमी।
1: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
2: ए युग तुम्हारा, ए रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान।
3: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद। तभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़े vandebharatam.org पर रजिस्टर करें।
4: From the newsroom to the studio to the thick of political action.
0: Now watching NDTV 24/7, the hope is that beyond this election, this will be one of the major issues. With multiple challengers in the fray, the TMC also has done a bit of rejig. Remember, this is also a district that has been plagued by communal violence. Come to some of the sabhas that the BJP is also organizing, especially in the villages of West Bengal.
4: When stories have impact.
5: Padmasar Joshi, managing editor and prime time anchor.
4: Then news has influence. The buck stops here with Padmaja Joshi.
0: Your work is being watched by people. You think that you're making an impact in this time. I think that's really a huge validation, very rewarding, and I'm pretty certain that Team NDTV will go from strength to strength.

0: BJP has. Banners that read like punchlines, protest footage cut like content, a movement that knows exactly how to make itself impossible to scroll past. Bureau Report, NDTV.
1: Well, the anti-paper leak bill has now been tabled in the Lok Sabha by Union Minister Jitendra Singh amid noisy protests by the opposition. The amendment bill proposes fast-track courts in every state and mandates that investigation into paper leak cases be completed within 2 months. It also proposes jail term of 5 to 10 years and fines up to Rs 50 lakh for those involved in paper leaks or use of unfair means in public examinations. Now, for those organized paper leak rackets, the bill proposes a minimum of 7 year jail term and fines of up to Rs 10 crore. The bill was introduced amid opposition sloganing, with the government pressing ahead with its legislation despite the ruckus in the House. Sources have told NDTV that the government wants opposition to discuss the anti-paper leak bill, and the government will wait for opposition to discuss the bill. The discussion, we believe, is going to happen tomorrow. Here are some of the political reactions coming in.
2: और ऑपोजिशन के भी कई मेंबर्स ने अमेंडमेंट दिए हैं, वो भी तैयारी करके आए हैं. बहुत ही महत्वपूर्ण, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, छात्रों का जिंदगी के लिए ये महत्वपूर्ण बिल है. सब बोलने वाले वक्ता भी तैयार हैं, फिर भी जानबूझ करके कांग्रेस पार्टी और उसके कुछ साथी जानबूझ करके आज इतना महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा होने नहीं दे रहे हैं. मैं बहुत दुखी मन के साथ कह रहा हूँ. पहले दिन तो वो कह रहे थे कि चर्चा करना चाहिए, एग्ज़ाम का मामला है, बच्चों का मामला है. अब जब चर्चा करने के लिए इतना महत्वपूर्ण बिल लेकर के जब आया है, टाइम भी दे चुके हैं, 6 घंटे स्पीकर साहब ने, और टाइम देंगे, आप चाहते तो और टाइम देंगे, फिर भी ये कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं लग रहे हैं.
3: देखिए, शिक्षा विभाग की सुधार को लेकर ये सरकार गंभीर नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी जी गंभीर नहीं है. वो एक नए हाई पावर कमीशन की बात करती है, लेकिन 2024 में जब राधाकृष्णन की हाई कमीशन की रिपोर्ट बनी, तो उस रिपोर्ट का क्या हुआ? अब 2 साल बाद दोबारा एक हाई कमीशन बना रहे हैं. एक फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी सीबीआई ने के द्वारा जो जांच हुई, उसमें एक आदमी जो मूल अपराधी था वो फ्री हो गया, क्योंकि उसके विरोध तहकीकात ढंग से नहीं हुई. तो ये सरकार गंभीर नहीं है. 20 जुलाई को बच्चों के साथ जो मारपीट हुई, उसके संदर्भ में भी कोई स्पष्टीकरण नहीं आज तक. उनका उद्देश्य बस यही है कि आरएसएस के लोग कैसे यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स बने, प्रिंसिपल्स बने.
4: अभी तो फिलहाल जो छात्र नौजवानों के साथ कई जगह पर सरकार केस करा रही है, मुकदमे लिखा रही है. सरकार को चेतना को चुनौती नहीं देनी चाहिए, और सरकार के लिए चेतना ही चुनौती बन गई. और अभी तो बात हम सब पॉलिटिकल पार्टी के लीडर बैठ के बात करेंगे क्या तय करना है.
1: With that, it's time for us to slip in a very quick break. Don't go anywhere. News and updates continue on the other side.
5: ए युग तुम्हारा, ए रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान.
6: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद. तभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार, और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई. आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़े, vandebharatam.org पर रजिस्टर करें.
7: From the newsroom to the studio to the thick of political action.
8: You're watching NDTV 24/7. The hope is that beyond this election, this will be one of the major issues. With multiple challengers in the fray, the TMC also has done a bit of DJing. Remember, this is also a district that has been plagued by communal violence. Come to some of the sabhas that the BJP is also organizing, especially in the villages of West Bengal.
7: When stories have impact.
9: Padmajal Joshi, managing editor and prime time anchor.
7: Then news has influence. The buck stops here with Padmajal Joshi.
8: Your work is being watched by people. You think that you're making an impact in this time. I think that's really a huge validation, very rewarding, And I'm pretty certain that Team NDTV will go from strength to strength.

0: अच्छा नहीं लग रहे।
1: देखिए, शिक्षा विभाग के सुधार को लेकर ये सरकार गंभीर नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी जी गंभीर नहीं है। वो एक नए हाई पावर कमीशन की बात करती है, लेकिन 2024 में जब राधाकृष्ण की हाई कमीशन की रिपोर्ट बनी तो उस रिपोर्ट का क्या हुआ? अब दो साल बाद दोबारा एक हाई कमीशन बना रहे हैं, एक फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी सीबीआई ने के द्वारा जो जांच हुई उसमें एक आदमी जो मूल अपराधी था वो फ्री हो गया, क्योंकि उसके विरोध तहकीकात ढंग से नहीं हुई। तो ये सरकार गंभीर नहीं है। 20 जुलाई को बच्चों के साथ जो मारपीट हुई उसके संदर्भ में भी कोई स्पष्टीकरण नहीं आज तक। उनका उद्देश्य बस यही है कि आरएसएस के लोग कैसे यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स बने, प्रिंसिपल्स बने।
2: अभी तो फिलहाल जो छात्र नौजवानों के साथ कई जगह पर सरकार केस करा रही है, मुकदमे लिखा रही है, सरकार को चेतना को चुनौती नहीं देनी चाहिए। और सरकार के लिए चेतना ही चुनौती बन गई। और अभी तो बात हम सब पॉलिटिकल पार्टी के लीडर बैठ के बात करेंगे क्या तय करना है।
3: With that, it's time for us to slip in a very quick break. Don't go anywhere. News and updates continue on the other side.
4: Launch control, 0 to 100.
5: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
6: This car makes no sense, yet it makes every sense.
7: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
8: Your friend said, ye le le. We said, maybe not.
9: Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
10: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
11: The front lines of Kargil. The fury of Operation Sindoor.
12: So many attacks.
11: The chaos and cries of disaster zones. To fighter jet cockpits. And the world's most defining interviews.
12: It's incredible.
11: He has seen history break. Live. Unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
12: Welcome to Left, Right and Center.
11: Hard facts.
12: War-struck country.
11: Hard questions.
12: In the Ukraine.
11: 30 years of trust.
13: In the Kargil area.
12: North Ukraine.
14: In France. In Italy.
12: At Srinagar.
14: I am Mr.
12: Vishnu Shom for NDTV.
11: Vishnu Shom. Only on NDTV. He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones.
15: This location from Tel Aviv
11: brought clarity to complex issues of national security and international affairs.
16: Prime Minister Narendra Modi spoke to him at length yesterday.
17: The Ayatollah Khamenei is gone.
18: There has been a missile attack right behind you,
19: and we need to rush into a shelter.
6: Heading there.
2: Will Prime Minister KP Sharma Oli resign?
11: And now, Aditya Raj Kaul. Covering international affairs like no one else, only on NDTV Network.
5: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
1: Hello and welcome to Watching Prime 5.
5: The show that sets the prime time agenda.
1: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
5: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
7: POK ke firing range mein khade hain.
9: Just few inches away is POK.
7: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं. Is it fire?
17: ये युग तुम्हारा, ये रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी।

0: When the battle is for the trust of young India, where do politicians go? To Parliament, to a press conference, or to Instagram? That's exactly the strategy Prime Minister Narendra Modi appears to have adopted in the middle of the nationwide row over examination reforms. As the students continue to demand answers and the political battle intensifies, Prime Minister has launched a series of Instagram videos explaining the government's reform roadmap. The first signal came on the 23rd of July. For the first time since the examination row escalated, Prime Minister Narendra Modi released a video on Instagram addressing the issue of exam reforms. Rather than engaging in the political slugfest, the Prime Minister assured students that government was committed to fixing the process. It was a carefully crafted message, short, direct and designed for a social media audience.
1: मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे. आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया. फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी. कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा. थैंक यू फ्रेंड्स.
0: अ डे लेटर अनदर इंस्टाग्राम वीडियो. दिस टाइम ही थैंक द यूथ फॉर द ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स.
1: थैंक यू फ्रेंड्स. कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया. मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी. ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा.
0: The messaging remained consistent. Focus on reforms, focus on students, and avoid the political noise surrounding the protests. The outreach has now entered the third phase. Prime Minister announced the formation of a high-powered task force on examination reforms to be led by Infosys co-founder Nandan Nilekani. The announcement was once again made through an Instagram video, reinforcing the government's decision to communicate directly with the young audiences on the platform they use the most.
1: जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, वे जेलों में सड़ रहे हैं. हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं. हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा.
0: द टाइमिंग इज सिग्निफिकेंट. For days, the country witnessed protests over the examination system. Students occupied the streets, political parties entered the debate. Against that backdrop, Prime Minister's communication strategy appears focused on speaking directly to young Indians instead of responding through conventional political platforms. Whether this digital outreach changes public perception remains to be seen. The government's examination reform campaign is no longer confined to official statements of Parliament. It is now playing out on the smartphone screens of millions of young Indians. Bureau Report, NDTV.

0: सीबीआई ने के द्वारा जो जांच हुई उसमें एक आदमी जो मूल अपराधी था वो फ्री हो गया, क्योंकि उसके विरोध तहकीकात ढंग से नहीं हुई। तो ये सरकार गंभीर नहीं है। 20 जुलाई को बच्चों के साथ जो मारपीट हुई उसके संदर्भ में भी कोई स्पष्टीकरण नहीं आज तक। उनका उद्देश्य बस यही है कि आरएसएस के लोग कैसे यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स बने, प्रिंसिपल्स बने।
1: अभी तो फिलहाल जो छात्र नौजवानों के साथ कई जगह पर सरकार केस करा रही है, मुकदमे लिखा रही है, सरकार को चेतना को चुनौती नहीं देनी चाहिए। और सरकार के लिए चेतना ही चुनौती बन गई। और अभी तो बात हम सब पॉलिटिकल पार्टी के लीडर बैठ के बात करेंगे क्या तय करना है।
2: With that, it's time for us to slip in a very quick break. Don't go anywhere. News and updates continue on the other side.

बट सर वाई आर यू नॉट क्वेश्चनिंग द फैक्ट फॉर दैट देयर वर पीसफुल प्रोटेस्टर्स एज वेल, जिनके पीछे भी एफआईआर हो गई है, एंड एफआईआर इज समथिंग जो बैक विदड्रॉ नहीं हो सकती, उनके लिए तो टाइम बीइंग 8-10 महीने के लिए उनका तो